0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. और उम्मीद करती हूं कि आप ये खूबसूरत मौसम वाली सुबह एंजॉय कर रहे होंगे और आपका मूड तबीयत बखैर होगी दिलशाद होगी. और अच्छी सुबह के लिए जरूरी है कि आप अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से. अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है. और अगर आप जितना शुक्र करेंगे आपकी जिंदगी में बरकतें और रहमतें मजीद बढ़ेंगी इंशाअल्लाह. हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आज हम पढ़ रहे हैं सूरह मुत्तफीन का तर्जुमा. आगे पढ़ते हैं तर्जुमा. आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कम तोलने वालों के लिए खराबी है वो लोग कि जब दूसरे लोगों से नाप लें तो पूरा वसूल करें और जब उन्हें नाप या तोल कर दें तो कम कर दें. क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि उन्हें दोबारा जिंदा उठाया जाएगा. और ये कितनी खूबसूरत बात है. अल्लाह ताला कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जो दूसरों का नुकसान करते हैं, जो चीटिंग करते हैं कम तोलने वाला. और कम तोलने वाला सिर्फ यही नहीं कि जो सब्जी वाले हमें तोल रहे हैं, हर कोई आपको चीटिंग कर रहा होता है, आपको बताता नहीं है और आप पे फजूल वाले टैक्स भी लगाते रहते हैं और आप कहते हैं कीमत तो ये थी और एंड में कीमत ये है. और मैं हर एक से यही गुजारिश करूंगी जो कि आप टैक्स मिला के बताएं. 15% टैक्स अलग करके क्यों बता रहे होते हैं, भाई ऐड कर लो कि भाई 15% टैक्स इतना बन रहा है, इतनी ही है टोटल प्राइस. और लोग ले लेते हैं कि यार चलो टैक्स कितना होगा और उसके बाद फिर पता चलता है प्राइस तो इतनी हो गई है. तो इसलिए क्या कहते हैं, हमेशा कारोबार में आप जितनी ईमानदारी से काम करेंगे आपको उतनी ही बरकत होगी. भले लोग यहां पे लाख समझा लें कि यार तुम कमाओगे क्या. तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर से बीमारियां खत्म कर दे, खासतौर पर हमारे लीडर से. आमीन सुमामीन. और राइट, और हमारा दिल चाह रहा था कि सुबह सुबह नुसरत फतेह अली खान की आवाज सुने. आइए सुनते हैं.

0: 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब जिंदगी
2: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच HBO फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBO
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: This program is brought to you by
4: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: And
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
7: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
2: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL And
8: Candy Land
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

वेलकम बैक दोस्तों, आप कैसे हैं? और आई होप कि आपका मूड अच्छा होगा। आज बड़ा अच्छा मौसम है। जब मैं आ रही थी और बादल छाए हुए थे, छा रही हैं बादलों के साए। और लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगी साथ साथ कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। खैर, आज का हमारा टॉपिक दिल के मौसम से गहरा ताल्लुक रखता है। और तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि किसी का दिल जीतना हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है जो बहुत ही कम लोगों को आता है और लोग इसका ध्यान भी नहीं देते। लिटरली आप हर इंसान ये हुनर सीख सकता है, लेकिन लोगों को लगता है कि यार मतलब इसमें क्या, हम लोगों को पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजते हैं, डॉक्टर बन जाओ, MBA कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, लेकिन लोग ये सब बन भी जाते हैं, लेकिन दिल नहीं जीतना आता किसी को। बहुत कम लोग हैं जो मतलब खैर से मतलब चाय का ढाबा चला रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो हुनर होता है कि लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं। तो दिल जीतने का हुनर जो है ना, वो लोगों को नहीं आता। और दिल जीतने का हुनर बहुत आसान है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो लेकिन ये सारी बातें, दिल कैसे जीतना है, ये आज हमारा सवाल है। और आई एम श्योर कि हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, वो हमें मैसेज करके इस सवाल का बहुत अच्छा सा जवाब देंगे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप भी हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या @आजयसमिया इंस्टाग्राम पे। एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका पैगाम, और उसको भेज दें 36365। और हमारे पास ऑलरेडी मैसेजेस आ गए, हमारे पास मैसेजेस आए हैं नजीर खोसो के, कामरान गबोल के, और इसके अलावा इकबाल हुसैन साहब। इकबाल हुसैन साहब आप जल्दी आ गए हैं, कैसे हैं आप? इतने प्यारे फूल हैं वैसे, कभी असली में कब भेजेंगे इकबाल हुसैन फूल आप मुझे? दिन हो गए किसी ने मुझे फूल नहीं दिए हैं। और कभी कभी मैं खुद ही खरीद लेती थी फूल, एक जमाने में माधुरी दीक्षित की तरह मैं अपने आप को खुद ही फूल ले देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन फूल वाकई में बड़ी प्यारी चीज है। अब जरा लोगों ने फूल देना कम कर दिया, लेकिन फूल इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। ऑलराइट, और आप लोगों के मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा और इसके आप क्या कहते हैं। और हम जो है अभी आपके लिए ये गाना प्ले करें। एक्चुअली मैं गाने सारे अपने लिए ही प्ले कर रही हूँ, आपके लिए क्यों बोलूं मैं? तो अपने लिए गाने प्ले कर रही होती हूँ ताकि मैं एनर्जाइज रहूं, तो ही तो फिर मैं अच्छा शो करूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक। I feel good because I am actually feeling good. I hope you are also feeling good.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा। आप लोगों के पैगामात मेरे पास आ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक यह है कि किसी का दिल जीतना हो और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो बंदा ही क्या जिसने लाइफ में किसी का दिल ही ना जीता हो। अच्छा माँ बाप तो वैसे ही राज दुलारे बच्चा कैसा भी हो उसको प्यार कर ही रहे होते हैं लेकिन उनका उन बच्चों में से भी एक फेवरेट होता है जो वाकई में इस बात के बारे में सोचता है कि कैसे मैं अपने माँ

के बारे में सोचता है कि कैसे मैं अपने माँ बाप का दिल जीत सकता हूँ या दिल खुश कर सकता हूँ, वही फिर लाडला बच्चा होता है। या हमीद कह रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन, दिल जीतने के लिए तारीफ करना जरूरी है, किसी का दिल की बात समझोगे तो दिल जीतोगे ना। हाँ, ये भी जरूरी है। पहली बात है डिसाइड करिए बंदा इस काबिल भी है कि आपने उसका दिल जीतना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि अगर मैं एक बहुत ही बेकार इंसान के साथ काम करूं या बॉस मेरा अच्छा ना हो, और फिर आप बंदा एक दूसरे को बर्दाश्त ही कर रहा होता, आप दिल जीतने की कोशिश करते नहीं, छोड़ा यार, मतलब सही है, जस्ट जो भी रिक्वायर्ड है बेस लाइन काम करो और बस दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आपका बॉस बहुत अच्छा इंसान है या आपको अच्छा लगता है या आप उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आप इंतहाई सेल्फिश हैं कि बॉस को मक्कर लगा के आपने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो फिर आप फिर कोशिश भी करते हैं कि हाँ फिर आप टाइम पे आते हैं या फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। पहले आपने डिसाइड ये करना होता है कि आपको चाहिए क्या और वाकई में आप इस इंसान का दिल जीतना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसी तरह अगर किसी से आपको मोहब्बत हो जाए और आप बोले कि बस अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम, ये वाली आपकी कैफियत हो, तो फिर आप जरूर कोशिश करेंगे कि आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे। तो और कुछ लोगों की ईगो इतनी ज्यादा होती है तो वो तो लड़की में भी मेहनत नहीं करते, कहते यार बस सही है, आती है तो आए वरना जाए। और खासतौर पर जो बहुत गुड लुकिंग लोग होते हैं, कहते हम क्यों किसी के पीछे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में आपको अपनी अना कम करके सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी होती है और उसका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और शहरी लोगों के अंदर ये बात नहीं होती, शहरी लोग बस अकड़े अकड़ाए होते हैं। शहरी लोग इवन अब लिटरली मैं अब कुछ कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये होता है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ फॉर अ बैंक फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक एंड सो उधर कहा कि वो मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे सीबीएम में पढ़ाया था, मेरे टीचर वही वहां पे मेरे बॉस थे, और वो कह रहे कि जी अब आपने इनको नाम से बुलाना है, आपने ना इनको सर नहीं बोलना। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, हम तो बचपन से सर बोल रहे होते हैं, बॉस हो या फिर क्या कहते हैं जी ये आपके टीचर हो, यू ऑलवेज से कि सर। नहीं जी अब आपने जो है ना वो सर नहीं बोलना, आपने बस नाम से लेना। अब नाम से बंदा क्या किसी का करीब आ जाएगा या रिस्पेक्ट होगी, मतलब आप किसी का दिल जीत, आई थिंक रिस्पेक्ट से ये सारी बातें शुरू होती हैं। और तो रिस्पेक्ट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी के दिल से रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो आप उसको आप दिल कैसे जीतेंगे। इवन रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपको पहले दिखाना पड़ता है कि आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, और आज के लिए बड़ा जरूरी है कि स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं। और तो बात यह है कि अगर आप गांव वाँव में जाएं तो गांव वाँव में रिस्पेक्ट शो करने का लाइक एक अलग ही लेवल है। वो तो बड़ा तरक्की कर रहे होते हैं कि जी बस आप बैठे और वो कहते हैं जी आप ऊपर बैठे हैं, खैर हमारा वो तो नहीं कि हम जमीन पे बैठे आप ऊपर जाएं। लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे हैं दुनिया के अंदर, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में है, या शायद वो पुरानी हस्तियां हैं जब इस दुनिया में नहीं, वली औलिया। तो फिर आपको दिल चाहता है क्या वो मेरे सामने है तो आप उनके कदमों में ही बैठे रहें। कदमों में बैठना शहरी लोगों को नहीं आता, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपके अपने घर में आपकी माँ बाप ऐसी शख्सियत है कि आपको उनके कदमों में बैठना चाहिए, कभी उनके पांव दबाएं, उनके पांव के साथ बैठे रहें। आपको नहीं पता कि उनको ये बात कितनी अच्छी लगती होगी कि माँ बाप को कि यार बच्चा उनको कितनी मोहब्बत दे रहा है, कितनी इज्जत दे रहा है। और दिल में इज्जत नहीं होती जी, दिल में प्यार है बहुत, ओ भाई दिल दिखाना पड़ता है, ये दिल विल का सीन। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं दिखा नहीं पाता। अगर आप दिखा नहीं पाते अपना प्यार और अपनी इज्जत, आप बहुत बड़े फेलियर हैं, मान ले। रिस्पेक्ट और लव दिखानी पड़ती है। और अगर आपको अपने करियर में तरक्की करनी है तो डेली बेसिस पे जाके अपने बॉस को दिखाएं और जताएं कि सर तुसी ग्रेट हो। और नैनजी कह रहे मॉर्निंग सैम यू हैव अ प्रो लेवल स्किल हाउ टू विन द हार्ट, जस्ट गिव मी टिप्स हाउ टू विन योर हार्ट। ओहो अच्छा अच्छा, चलिए भी अच्छी बात है एनजी कि आप खुद शो सुन रहे हैं, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप कहते हैं कि टुडे आई एम ऑफ एयर, मजा नहीं आता। एनीवेज, और नसीन पटेल जी आज आपका नाम नजर आया, कल मैंने आपको बड़ा मिस किया, कहाँ थी आप लाला रुख, कैसे हैं आप लाला रुख, आप क्या कहेंगी। आई एम श्योर कि लाला रुख के पास जो है ना वो बहुत, वैसे किसी का दिल जीतना आसान है, लड़कियां ये बात कह सकती हैं, उनको सिर्फ खूबसूरत दिखना है और ये काफी है उनके लिए। लड़की को तो बस खूबसूरत दिखना है, दिल विल कौन देखता है लड़की का यार, खूबसूरत दिखे और हसीन हो काफी है। खैर अगर आप किसी के लिए ये प्यार से अगर ये वाला गाना भी गा दें तो हो सकता है जाने वाली रुक जाए और इम्प्रेस हो जाए। आइए सुनते हैं।

0: हाँ जी, तो ऐसे अगर कोई गाना गाएगा तो प्यार तो हो ही जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है किसी का दिल जीतने के लिए। फिलहाल आप भी मेहनत करें, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे, और हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद।
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और मुझे क्या कहते हैं जानते तो होंगे आप, फिर भी खैर बता देती हूँ. आरजे समिया और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. और एक अच्छी खबर है कि सीएम मुराद ने कहा है कि गुलिस्तान जौहर के रोड्स बनवाना शुरू कर देंगे. तालियां हो जाए सीएम मुराद के लिए. ऐसी बातें करेंगे तो कभी ना कभी हमारे दिल जीत ही लेंगे. वैसे सिंध गवर्नमेंट को भी सलाम है कि आज तक जो है ना कराची के लोगों का दिल नहीं जीत पाई है लोग. ये सिर्फ इंटीरियर सिंध, क्योंकि उनको पता है वोट कुछ भी कर लो कराची के लोगों के लिए वोट तो मिलने नहीं है. वो बेचारे इंटीरियर सिंध वालों के, वो भी एक मखसूस तबके का ख्याल कर रहे होते हैं जहां से उनका वोट पाएंगे. लेकिन चलो अच्छा काम कोई भी करे अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए. तो सीएम कह रहे हैं कि हम जो है ना, मैं खास तस्वीर देख ली होगी उन्होंने डॉन के अंदर कि आप जो है ना वो हम ये गुलिस्तान जौहर का जो है ना वो काम जरूर हम कराएंगे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर और ये बहुत जरूरी है. मैं सोचती हूँ कि मेयर वहाफ हमारा कब दिल जीतेंगे. वो भी बेचारी मेहनत कर रहे होते, कभी ना कितनी कितनी तो इनॉग्रेशन करते होंगे. उनका जो स्केड्यूल होता होगा बोलेंगे इस हफ्ते मैंने यहां जाना है, इस हफ्ते मैंने वहां जाना है, ये चीज स्टार्ट करनी है, क्रेडिट खुद ले लेना है वगैरह वगैरह. दिल नहीं जीत पाए. आपका दिल जीत पाए? हो सकता है मैं यू नो थोड़े जजमेंटल हो रही हूँ, मगर आप बताएं आपका दिल जीता है उन्होंने? मेरा तो मुश्किल ही लग रहा है. फिर मैं वैसे भी काफी हुसन परस्त इंसान हूँ. ऑलराइट. और एनर्जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है वो केयू का चार्ज भी ले लें. बेचारे एनर्जी चलाना कोई आसान काम नहीं है, केयू का भी चार्ज दे दिया है. चलो भाई चलो शुक्र है कोई, मतलब मैं कहती हूँ कोई भी आए लेकिन चलो हालात बेहतर हो. और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई भी जो केयू का स्टाफ है जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है थोड़ा सा खुश इखलाक हो जाए. क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया यकीन करें कामयाब है आप. और जो टीचर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ स्टूडेंट्स का ही दिल नहीं जीत पाते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते या सबको एक ही जैसा समझते हैं, तो ये उनकी बड़ी कोई बेवकूफी ही कहूंगी मैं. और राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स आर पीपल जो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं. या तो वो जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं या जल्दी आपसे नफरत भी करना शुरू हो जाते हैं. और जो स्टूडेंट्स का दिल ना जीत पाए वो बहुत बड़े नुकसान में रहता है. और राइट, और हमारे पास इकबाल हुसैन और आली अंसारी का भी मैसेज आया हुआ है. और आली अंसारी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. इकबाल हुसैन का मैसेज हम पढ़ते हैं. इकबाल हुसैन कहाँ चला गया आपका मैसेज? ओके, वेट वेट वेट, ढूंढेंगे हम, टेंशन नहीं है. ओके. और इकबाल हुसैन कह सलाम अलैकुम समिया जी, टॉपिक पर यही कहूंगा दिल जीतना आपसे सीखा है. दो मीठे बोलकर सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, हर किसी को ये कह देना कि मैंने हूं ना किसी बात को सुनना. और हाँ, कह देना कि किसी बात मैं हूं ना और सुनना, गिफ्ट देना, अपना वक्त देना, किसी की तारीफ करना, ये बातें ही आप किसी का दिल जीत सकते हैं. लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाला इस लायक भी है कि नहीं. हाँ, ये भी देखना चाहिए. देखिए, अगर आपने किसी से शादी कर ही ली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही दफा उसका दिल जीतना है. डेली बेसिस पे ट्राई करना चाहिए कि आप अच्छा इंप्रेशन डालें. ये नहीं कि बस वो आ गई है घर पे तो बस आ गई है. और आलिया अंसारी कह रहे हैं कि नाइस टॉपिक, एवर सिंस चाइल्डहुड माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टॉट मी दैट अ पर्सन्स ट्रू आइडेंटिटी इज देयर कैरेक्टर, नॉट देयर वेल्थ और फेम. वी लर्न टू गिव रिस्पेक्ट, टेल द ट्रूथ, कीप अवर वर्ड एंड ट्रस्ट इन अल्लाह इन एवरी सिचुएशन. वट एवर सक्सेस आई हैव टूडे इजन जस्ट फ्रॉम एजुकेशन और एक्सपीरियंस, इज बिकॉज ऑफ दोज वेरी प्रिंसिपल्स. I don't believe in showing off. I try to let my character speak for itself. I treat people with respect. I keep my promises. I stand by others in tough times and I do my best to be honest. Islam teaches us sincerity, integrity and good character. And in professional life, trust is the foundation of every strong relationship. If someone appreciates that, alhamdulillah. If not, I don't change who I am just to impress. I hold on to my self-respect and my values because actions speak louder than words. That's my family's teaching and that's the principle I live by. Bahut shukriya Ali Ansari, aapne itna acha message kiya. और सारी बात कहते हैं ना कि हर बात इसका साबता यही है कि आप लोगों को जितनी रिस्पेक्ट देंगे और इज्जत देंगे और ये नहीं देखेंगे कि वो आपके फायदे के. लोग बड़ी सिलेक्टिव इज्जत देते हैं. ऐसे नौकर की कौन, नौकर को कौन इज्जत देता है यार? और नौकर के साथ कौन भाई भाई लगा के बात करता है? नौकर है ये. और इस तरह सामने जी इम्पोर्टेंट कोई बंदा आ जाए और जिससे डील करनी हो बिजनेस, उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं. जो आप रिस्पेक्ट देने वाला इंसान जो है ना वो भेदभाव नहीं करता, वो एज अ ह्यूमन बीइंग सबकी रिस्पेक्ट करता है कि इंसान है. अगर वो इंसान है वो रिस्पेक्टफुली ट्रीटेड यू नो डिजर्व करते हैं. अनलेस वो आपके 2 करोड़ रुपए लेके भाग गया हो और अनलेस वो उसका ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से हो. और राइट, और फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं गाना एज लॉन्ग एज यू लव मी. अभी तो बड़ी बातें कर रहा है कि तुम कैसी भी हो अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो काफी है. आइए सुनते हैं.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना ढक्कन।
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

लाओ पर हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम बात कर रहे हैं दिल जीतने की, और हम कभी भी कितनी बातें करें खूबसूरत रिस्पेक्ट वगैरह जो भी, लेकिन आबिद अमीर जो है हमेशा एक ही बात कहेंगे और वो ये है खाने पे। उनकी बात खाने से शुरू होती है, अक्सर खाने पे खत्म भी होती है। आबिद के दिल जीतने के लिए खर्चा करना पड़ता है क्योंकि जिंदगी का क्या है भरोसा, जी भर के खा ले समोसा। अस्सलाम वालेकुम समझा, ये तो मेरा शेर है समोसे का। अगर जो मैं आपको बात बताऊं, खाना खिलाने वाले लोग हमेशा पॉपुलर होते हैं, ये सच्ची बात है। और मतलब कि यू नो जो लोग सखी होते हैं वो हले का दिल जीत लेते हैं, फिर उनकी शक्ल वक्ल नहीं देखी जाती। और मेरे एक बॉस थे और अभी भी वो मेरे अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, इसलिए भी क्योंकि वो बहुत जेनरस थे, वो हमेशा खिलाते थे, मतलब हमें लेके जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम को लेके जा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं अगर हमारे साथ कोई और एक्स्ट्रा बंदा भी आ रहा है उसको भी खिला रहे हैं। तो ये मैंने उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो ना कंजूसी नहीं करते थे, उनका एक डायलॉग था कि ज्यादा हो जाए कम ना हो। और मुझे याद है कि खाना खिलाने के मामले में ना बंदा कभी कंजूसी ना करे, और कंजूस लोग भले कितने खूबसूरत हों और थोड़े मतलब कंजूस हैं तो कंजूस हैं, और मर्द को कभी कंजूस नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि मौला अली का भी कॉल है, कंजूस आदमी से कभी दोस्ती ना करो, वो तुम्हें तुम्हारी अपनी जरूरियात से भी रोक देगा। कंजूस लोग जो किसी पे खर्च नहीं करना चाहते, कभी गलती से किसी को नहीं खिलाते, और जब भी बिल देने का टाइम आता है उनका फोन आ जाता है, वो बहुत जल्दी उतर जाते हैं। और ख्वातीन के तो वो रेडार से बिल्कुल ही आउट ही हैं जो लोग कंजूस होते हैं। और कंजूस लोग बस अल्लाह रहम ही करे उनकी बीवियों पे, बीवियों को शॉपिंग नहीं लेके जाते, हर वक्त रोती रहती हैं, वो रोते रहते हैं नहीं है नहीं है नहीं है। खैर ख्वातीन को भी निकलवाने के बहुत हजार तरीके आते हैं, जहां ख्वातीन को मैं हमेशा बोलती हूँ वो हथियार हैं ख्वातीन के पास के जो मर्द सोच भी नहीं सकते। इसी तरह ख्वातीन से भी यही गुजारिश है कि वो जिनको अच्छा, दूसरी बात है अच्छा खाना बनाना भी हमेशा काफी नहीं होता। कुछ ख्वातीन को मैं जानती हूँ कि वो खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं लेकिन फिर वो अपना ख्याल नहीं रखती, मतलब कि वो जरूरी है कि हस्बैंड आए तो आप कोशिश ये करेंगे थोड़ा उसके आने से पहले तैयार हो जाएं, लिपस्टिक लगा लें और क्या कहते हैं जरा अच्छे कपड़े पहन लें या थोड़ा हल्का सा परफ्यूम लगा लें, तो वो हस्बैंड का मूड अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शायद हाउसवाइफ को अंदाजा नहीं है कि क्या क्या हसीन परियां होती हैं ऑफिस के अंदर, और जाहिर है वो जो ऑफिस में लड़कियां होती हैं वो तो सिंगल होती हैं, उनका काम सिवाय आधा उनका फोकस तैयार होने में होता है, और आधी तनख्वाह भी उनके अपने कपड़ों में और बैग्स में और अपने आप को खूबसूरत दिखाने में जा रहा होता है। अब वो बेचारे इतनी हसीन लड़कियां हसीन चेहरे के बाद मुझे वो घर आते हैं और ऐसी खातून को देखते हैं, हालांकि उस खातून ने पूरा दिन उनके घर का उनके बच्चों का ख्याल किया होता है, उसके लिए खाना बनाया होता है, लेकिन खैर मर्द है वो ये चाहता है कि बीवी जो है ना वो भी अच्छी लगे, स्टाइलिश हो, खूबसूरत हो, ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। इसलिए खवातीन को ये चाहिए कि सिर्फ जो है ना वो खाना उनके पेट का ही ख्याल ना करें, उनकी आंखों का भी ख्याल करें, ये ना हो कि उनके चेहरा देख के उनकी आईसाइट ही खराब होना शुरू हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप मतलब सिर्फ बाकी अगर आप अच्छी लग रही हो खाना बाहर से ऑर्डर कर ले, बोले नहीं नहीं इतनी अच्छी लग रही हो किचन में मचाओ हम बाहर से खा लेंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मर्द का हजरात का हमेशा पेट से रास्ता नहीं जाता, दिल का कहीं कभी आंखों से भी जाता है। तो प्लीज अपने आप को जरा मेंटेन रखें, अच्छे रहें, बहुत ज्यादा ओवरवेट ना हो जाएं, कोई फायदा नहीं है। यकीन करें मर्दों के लिए अपने आप का वजन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप काम करिए, आप डांस क्या करें, इसी बात पर हमारा क्लासिक गाना है जो मैं लगाने वाली हूँ। और अगर आपने हमें अभी सुनना शुरू किया है और आप सोच रहे हैं कि कैसी बातें कर रही हूँ मैं, तो मैं ऐसी ही बातें करती हूँ यार, हमें आप मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे, आज समिया के इंस्टाग्राम पे। एक तीसरा तरीका है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि किसी का दिल जीतना हो तो क्या करना चाहिए। मेरा एक आजमूदा फॉर्मूला है कि डांस करना चाहिए बीवियों को, बीवी ऐसे माही आईवे का खासकर कराची के अंदर कोई आए तो आप बस इसको ये ना डांस करके दिखाएं उनकी बीवियां, और उसके बाद बच्चे भी सीखेंगे भाई अम्मी कितनी खुश है, और हस्बैंड आए तो आप तैयार होके ना जरा डांस करें और उनका फूलों की पत्तियां भी ले आए। फूलों की पत्तियां सस्ती होती है, खैर लड़की खवातीन फूलों की पत्तियां फेंकेंगी नहीं गया, बाद में कचरा होगा मैंने ही साफ करना है, लेकिन चलो कभी कभी चलता है। सो ये एक मर्दों का ख्वाब है, आइए सुनते हैं।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: किसने कहा था पहले?

0: 30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: This program is brought to you by
8: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
7: And
9: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
7: And
5: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: And HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
7: And
10: Candyland
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
11: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय सुमीहा। आज हम ये बात कर रहे हैं किसी का दिल जीतना हो तो क्या करना चाहिए और माशाल्लाह से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आज इस टॉपिक पे आ चुके हैं। जाहिर बातें दिल की हो तो लोग जरूर जरूर आपके सवाल का जवाब देते हैं। हमारे पास अली रजा और वजाहत आबिद अमीर एंड नुमैर आदिल अदनान अहमद नवीद अहमद के मैसेजेस आ गए शामिल करते हैं। और अली रजा कह रहे हैं किसी का ख्याल रखकर। अच्छा बिल्कुल सही बात है, ख्याल भी बड़ी चीज है वैसे, है ना। ख्याल रखना जरूरी है लेकिन और मैं मोहब्बत से ज्यादा ख्याल रखना। अगर आप किसी की छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल करते हैं तो आप उसका दिल जीत सकते हैं, ये है। और शादी के बाद जो है ना वो ख्याल ही से जिंदगी चल रही होती है और वो सारा एक्साइटमेंट जैसे मेरे अबू कहते हैं ना खत्म हो जाता है बेटा, वो खूबसूरती वो जाती है अगर कोई आपको जितना ख्याल करता है वही आपके साथ रहता है।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: and
3: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
2: and
4: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का हाथ पर और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: and HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
2: and
5: Cadillac
6: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं एक इम्तिहान है हर दिन एक जंग से कम नहीं एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है खिदमत में सबसे आगे सिंध
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
7: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
9: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ایف ایم 100،
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
5: السلام علیکم پاکستان۔

0: your location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: किसने कहा था पैसे बचा।

0: 24-7-365. FM 24-7-365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वी पी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: was the Russians.
1: Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, क्योंकि आप जानते हैं कि बाकायदगी से आगाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं होता बल्कि एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ होता है। तो अपने रिवायती अंदाज में हमने प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज कर लिया है, और इसी के साथ साथ अब आपको तरीका कार बता देते हैं कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, के चाय लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीका कार को फॉलो करें और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और अपने हाल अहवाल जरूर बताएं। मुझे यकीन है कि आज आपके हाल अहवाल कुछ हद तक बेहतर होंगे, और इसके कुछ हद तक बेहतर होने में जरा मौसम का भी एक अहम किरदार होता है। तो आज कराची का मौसम काफी हद तक बेहतर है, और आज दिन के औकात में भी धूप नहीं है, समुद्री बादलों का आना जाना लगा हुआ है, और आने जाने के साथ साथ वो थोड़ी देर तक रुक भी रहे हैं। तो द गुड थिंग इज दैट कि आज मौसम अच्छा है, और ये मौसम आज और कल दोनों ही दिन ऐसे ही रहेगा। हाँ, लेकिन अलबत्ता जुमरात के हवाले से खबरें कल हमने आपको बताई थी कि वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी के वापस आने की पेशन गोई मौजूद है, और वही हब्स वाली गर्मी। और ये गर्मी तो आपको पता है कि जब भी आती है तो अपने साथ खबर लेकर आती है कि जी हाँ, कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो बिल्कुल ये खबर भी मौजूद है, और उसी के साथ साथ भाई आज है जुलाई की 28th of July, और हैप्पी बर्थडे अगर आज मेरे लिसनर्स में से किसी की सालगिरह है या कोई और खास दिन है, तो भाई आपको दिल की गहराइयों से ये खास दिन मुबारक हो। अब कोई खास दिन है कि नहीं ये तो आप ही हमें बताएंगे कि आज आपकी जिंदगानी का कोई खास दिन है कि नहीं। अच्छा, और आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज कोई खास दिन बजाय नहीं बनाए जा रहे जिस पर जिक्र किया जाए, लेकिन जो भी होगा हम उस पर भी जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन बिलखसूस जिस किसी की सालगिरह है उसे हम मुबारकबाद देते हैं, और अगर कोई आपने आज किसी काम के बारे में सोचा है और आपका थोड़ा सा नर्वस है, क्योंकि अक्सर औकात हम ऐसे बहुत सारे काम करे होते हैं और उसके लिए हम ना बड़ी नर्वस हो जाते हैं और डरे हुए होते हैं कि पता नहीं ये काम सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम आपको गुड लक भी कहते हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह जो भी काम आपने करने का सोचा है वो अच्छा होगा। थोड़ा सा खुद पे यकीन और साथ ही साथ बर्दाश्त और पेशेंस, जो कि बहुत जरूरी है, और आजकल के टाइम में ना यही चीजें ना होने के बराबर है, क्योंकि लोग में बर्दाश्त और पेशेंस जो कि एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन अब नाम को नहीं है, सब्र नहीं होता, लोगों से इंतजार नहीं होता, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, हर चीज हम चाह रहे होते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हो जाए। और चाहे हम अगर कोई दवा खा रहे हैं, किसी मर्ज की दवा भी अगर हम खा रहे हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो एज फास्ट एज विंड हम पर असर कर दे, कि हम ना मिनटों में सही हो जाए, या मैक्सिमम अगर हमें एक हफ्ते का कोर्स दिया गया है तो वो एक हफ्ते तक ना जाए बल्कि एक दो दिन में ही जो है ना उस दवा का असर हम पर हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस तो जरूरी है। खैर जी, जल्दी से आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं, हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं। जब तक हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

Yes, my friend. So I'm back with the track. Track ke saath hum aa chuke hain wapas guftugu ka silsila aap logon ke saath hamara jari hai ke kya hal hawale hain aap logon ke is par bhi baat chal rahi hai, mausam par bhi baat chal rahi hai aur kya tarin surat hal hai is par bhi baat chal rahi hai aur baatein to anginat hain jo ki khatam hone ka naam hi nahi leti hain. ऐसे वाकई में अगर अक्सर औकात इस बात पर गौर किया जाए तो भाई बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने के लिए आजकल. और आजकल मजे की एक बात यह भी है कि आजकल हम लोग मोबाइल देखते हैं बड़े शौक से, लेकिन एक मोबाइल में ना आजकल आपको एक चीज ये भी मजे की लगेगी कि आपकी पसंद का आपसे रिलेटेड कॉन्टेंट भी आपको मिल जाता है. अक्सर औकात आप अपना रील्स पे जो टाइम है वो सक्सेसफुली वेस्ट करने में इसलिए भी कामयाब होते हैं बिकॉज आप उन चीजों से इतना रिलेट कर रहे होते हैं. आप कह रहे होते हैं हाँ यार ये तो मेरे साथ होता है या ये मेरी जिंदगी में ऐसा चल रहा है कि हाँ हम ये बात बोलते हैं, तो इसलिए भी ना आपको वो सारी चीजें काफी रेलेवेंट लग रही होती हैं, इसलिए आप उसे काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और अपने टाइम को समटाइम्स वेस्ट कर देते हैं, समटाइम्स इंजॉय कर लेते हैं. लेकिन मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और अब आपको वो अपना वक्त मोबाइल के साथ गुजारना अच्छा लगता है या किसी और के साथ गुजारना अच्छा लगता है, डिपेंड्स ऑन यू. बट द थिंग विच मैटर्स अ लॉट इज कि रात भर जागना जो है ना वो कोई सेहतमंदी की निशानी नहीं है, बल्कि वो आपको बीमार कर देती है, आपके चेहरे को खराब कर देती है ऑब्वियसली बिकॉज आप नहीं सोते. तो वो जो सुबह सुबह आप स्ट्रेस में जा रहे होते हैं ऑब्वियसली जब आपकी नींद पूरी ना हो तो ना तो आप कंसंट्रेशन अपने काम पर कर पाते हैं और ना ही आप जो है वो खुश रह पाते हैं, क्योंकि भाई 7 से 8 घंटे की जो नींद है जो कि अब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं जाग के या ये वो, तो वो जो हमारी नींद आजकल मुतासर हो रही है ना तो वो भी हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा रही है. तो नींद लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा बहुत अपने मोबाइल को भी इंजॉय करें लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी नींद को मुतासर ना करें. जहां हम इस बात को रियलाइज कर लेना कि भाई रात सोने के लिए बनी है और दिन सिर्फ काम के लिए बना है और उस काम में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आप जो है वो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, मोबाइल भी देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रात में ना खुद को बीमार ना करें. और अगर हम जिंदगानी को ऐसे ही गुजारने लगे तो मुझे लगता है कि 80% मसाइल हमारे ना ऐसे ही हल हो जाएंगे. लेकिन जी मजाल है कि हम इन मसाइल को हल करने के बारे में बात कर रहे हूं, हमें तो मजा आ रहा है इन मसलों में रहने में. नहीं जी, तो इन मसलों को जल्द से जल्द हल करें और रात में सोने की कोशिश करें, क्योंकि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम के लिए. तो आराम होगा रात में, काम होंगे दिन में और एनर्जी के साथ होंगे काम, ताकि ना आपके बॉस आपसे शिकायत करें, ना आपको घर की डांट पड़े, ना आपकी पढ़ाई में नंबर कम आए. तो जरूरी यह है कि इसमें आपको जरा कंसंट्रेशन का मुजाहरा कर अपने तमाम कामों को करना है. अच्छा भाई, हमारे पास मैसेज आ चुका है. कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? कल मैंने 3 मैसेज किए आपको पर आपने रीड नहीं किए. वालेकुम अस्सलाम. आपकी लवली आरजे तो ठीक हैं, लेकिन द मजे की बात इज दैट के लुकपल्ड आपके 3 में से कोई एक भी मैसेज हम तक मौसूल नहीं हुआ, इसी वजह से हमने शामिल नहीं किए. हमने आपके मैसेज का इंतजार किया बट हमें नहीं मिले. तो मैसेज शामिल सिर्फ उस सूरत हाल में नहीं होते जब तक वो हम तक पहुंचते नहीं हैं. तो हो सकता है मिस्टेकनली वो आपने कहीं और तो नहीं भेज दिए, क्योंकि हम तक तो नहीं पहुंचे भैया. ऑल राइट जी, इसी के साथ साथ हम ट्रैक की जानब भी चलते हैं क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो गई हैं. अब जो है वो एक अदर ट्रैक की जानब जाना चाहिए. आई थिंक इट्स अ नाइस ऑप्शन. तो चले जी ट्रैक को शामिल करते हैं और इसके बाद हम आते हैं वापस. तो आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. Hormones ke bare mein confuse hain. Mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan. Aakhir jism ke andar kya ho raha hai? To sunna na bhulein. Hormone Talks. Jahan hogi sehat aur hormones balance par khulkar baat. Maherin ki raaye aur rozmarra ki aasan tips. प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी कराची पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतस से कैसे बचा जाए सुनिए हार्मोन टॉक्स हार्मोन्स की दुनिया जुमेरात 30 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली

ऑल राइट, प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई काम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने आप सभी को कर दिया डेडिकेट, और सजादली की आवाज हमने की है आप सभी के नाम। और लुकपल कहती हैं कि जी थैंक यू लवली आरजे, यही तो खास बात है आपकी कि रिक्वेस्ट शो नहीं है फिर भी आप रिक्वेस्ट प्ले कर देती हैं। थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा खूबसूरत सा ट्रैक आपने हमें डेडिकेट किया था, बड़ी रिसर्च करती हैं लुकपल आप ट्रैक्स में और तब जाकर हमें डेडिकेट करती हैं, तो वाह भाई वाह, क्या कहने हैं आपके। ओके जी, सो ये तो बात हो गई भाई लुकपल की, लुकपल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ मजीद मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं जिसे हम करेंगे शामिल, लेकिन उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत को कायम करने के बाद आपसे ये जानना चाहता है कि आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, क्या पकाने का सोचा जा रहा है, गैस का जाने का टाइम हो गया है या अभी तक गैस के आने का इंतजार किया जा रहा है। सो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल है तो जिक्र लंच तो लाजमी है। तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बात को जानने का। अभी तक जो लंच बताने में बाजी ले गई हैं वो है लुक वर्ल्ड, बिकॉज शी इज द विनर टुडे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई लौकी गोश्त है इनके लंच में, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस बाकी हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि भाई उनके लंच में क्या है। कीमा है आपके लंच में, आपके लंच में कोई सब्जी है, आलू गोश्त है, निहारी है, चावल है, पुलाव है, क्या है भाई लंच में, ये तो हम आपकी ही जुबानी जानेंगे। तो लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। अच्छा मुझे लंच में जैसे सब्जी हो गई या बेसन की रोटी हो गई या दाल चावल हो गया या वो चना पुलाव हो गया, पता नहीं मुझे इस तरह की चीजें ना लंच में बहुत अच्छी लगती हैं, वेरी वेरी नाइस। लेकिन अगर आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं और सफर कर रहे हैं लंच टाइम पे, तो वो जो एक बिरयानी की खुशबू इर्द गिर्द घूम रही होती है ना, वो बड़ी मैं कहूंगी कि पेनफुल हो जाती है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं से अपनी जानिब खींच ही लेती है, क्योंकि वो जो बार बार देहों के ढक्कन खुल रहे होते हैं और उसकी खुशबू जो है वो एक एरिया में राज कर रही होती है ना, तो वो भाई एक बड़ी ही मैं कहती हूं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस होती है, और वो ना आपको बिरयानी की जानिब खींच के ले ही जाती है। अच्छा फिर खाने के बाद आपको पता चलता है कि वो बिरयानी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, लेकिन जो असल बिरयानी का गेम है ना वो है बिरयानी की खुशबू, जो कि आपको दोपहर या अक्सर औकात रात के टाइम में अट्रैक्ट कर अपने करीब ले ही आती है। अच्छा लेकिन सिर्फ बिरयानी की खुशबू की बात नहीं की जाए, क्योंकि दोपहर में अमूमन तौर पर घरों में भी लंच बन रहा होता है, ऑफिसेस में भी लंच टाइम होता है इस वक्त, तो इस वक्त भी ये हो रहा होता है कि जब सबके खाने गर्म हो रहे होते हैं ना, तो एक खुशबू का ही राज चल रहा होता है, तो उस वक्त कोई भी जो है वो एयर फ्रेशनर्स या उनकी जरूरत नहीं होती, बिकॉज खाने की खुशबू ना हर जानिब होती है और हर जानिब वो जो खुशबू है वो आपको बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है, और उससे सब ना अंदाजे लगा रहे होते हैं कि यार आज ना इसके लंच में ये लग रहा है, उसके लंच में वो लग रहा है, यार बड़े मजे का है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि अंदाजा हो रहा है कि बड़े मजे का है। सो इस तरह की फैंटेसीज जो है ना वो उमूमन तौर पर लंच टाइम में क्रिएट की जा रही होती है, इन फैंटेसीज को एंजॉय किया जा रहा होता है। तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके मैसेज का कर रहे हैं इंतजार, और हम इंतजार जब तक कर रहे हैं तो खाली खाली इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग एक अदर ट्रैक की जानिब चलते हैं और ट्रैक के बाद वापस आके आपके मैसेज को शामिल करेंगे। तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।

ओके, तो हम वापस आ रहे थे, तो हमने कहा चलो जी ट्रैक के साथ वापस आ जाते हैं और फिर करते हैं आप लोगों से खूब सारी बातें। अच्छा भाई, हमारे पास मैसेज आया है, कहती हैं आप हैं ही इतनी अच्छी, इसलिए सिलेक्ट करके सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ, फिर भी सॉन्ग भी कम है आपकी तारीफ के लिए। अल्लाह पाक आप सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करे। ओह थैंक यू सो वेरी मच माय लवली लिसनर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस प्यार का और आपकी इस प्यारी प्यारी दुआओं का। इसी तरह आप हमें दुआओं में याद रखें और इतना ही प्यार जो आप हमसे करती हैं वो जरूर करती रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमेशा आप भी हंसती मुस्कुराती और खुश रहें, क्योंकि भाई हंसते मुस्कुराते और खुश रहना तो बड़ा जरूरी है, और ये तो हमारा रोजमर्रा का पैगाम है जो हम अपने आवाम के नाम करते हैं। अच्छा भाई, आज कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इस पर हमने बात करी थी, तो नेशनल मिल्क चॉकलेट का बताया था, लेकिन उसी के साथ साथ आज नेशनल वाटर पार्क डे भी मनाया जा रहा है। तो भाई क्या कभी आपने वाटर पार्क का एक्सपीरियंस किया है? हाउ वाज इट? मैं वैसे वाटर पार्क बहुत ज्यादा नहीं गई हूँ, मुझे याद है कि मैं एक दफा अपने स्कूल वालों के साथ वाटर पार्क गई थी। ऐसे फार्म हाउस तो बहुत दफा गई हूँ, लेकिन वाटर पार्क का मेरा बस एक ही एक्सपीरियंस है, बट इट वॉज वेरी वेरी गुड एंड आई हैड सो मच फन। और ऑब्वियसली जब आपके दोस्त साथ होते हैं, स्कूल का टाइम होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज नेशनल वाटर पार्क डे मनाया जा रहा है, और वाटर पार्क कराची में भी बहुत सारे हैं, और इस वक्त क्योंकि बच्चों की छुट्टियां अख्ताम पजीर होने जा रही हैं और अच्छे मौसम को सिलेक्ट कर लोग जो हैं वो अपनी तफरीही मकामात सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें वाटर पार्क होता है, जिसमें सी होता है, यानी सी साइड, यानी कि समंदर जाने का सबका प्लान होता है, या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह। तो आपने कभी वाटर पार्क का एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो वो कैसा है हमें जरूर बताएं। लेकिन चाहे वो वाटर पार्क हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क हो, लेकिन मेरा ना हमेशा लोगों से ये बड़ा शिकवा रहता है, बड़ा गिला रहता है कि खुदारा इन जगहों को गलीज ना करें, गंदा ना करें। लोग ना बहुत गंदा करते हैं और इस चीज का ख्याल नहीं करते, और हम हमेशा जो है ना वो जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे होते हैं इन कुछ चीजों में। और क्योंकि हम इतनी गंदगी कर रहे होते हैं, अपनी खाने पीने की अशिया वहां फेंक देते हैं और बहुत ज्यादा गंदा कर देते हैं, तो साफ सुथरे एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। वो अम्यूजमेंट पार्क, वो समंदर अगर आपके लिए बनाए गए हैं कि आप वहां आए और इंजॉय करें, तो प्लीज इंजॉय करें, वहां पर गंदगी ना करें। लोग अक्सर औकात अपने कचरा वहां फेंक देते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि डस्टबिन है, लेकिन लोग डस्टबिन में कचरा नहीं, डस्टबिन के नीचे पड़ा हुआ होता है। तो अगर वो नीचे गिर गया है, आपने निशाने मार मार के लोग कचरा फेंक रहे होते हैं, अगर वो कचरा नीचे गिर गया है तो कोई बात नहीं, आप उठा के उसे वापस डस्टबिन में डाल दें, लेकिन कचरे को जरूर फेंकें, अपने तफरीही मकामात को गंदा ना करें। ये एक बड़ी जरूरी बात है, चाहे वो वाटर पार्क्स हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, चाहे वो समंदर है, इन तमाम जगहों का ख्याल रखना कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। तो एंजॉय करें मूवमेंट को, लेकिन गंदगी से करें गुरेज। ये है पैगाम फातिमा खान का तमाम सुनने वालों के नाम, और इसी के साथ साथ हम चलते हैं हदीका क्यानी की आवाज की जानिब, और हदीका क्यानी फ्रांस सईद की आवाज है। एंजॉय दिस ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक।

स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, ताकि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। तो प्रोग्राम का हिस्सा बनने में आपने जो नहीं करनी है वो है देरी। देरी नहीं करें, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसी के साथ साथ जो है वो पेट्रोल की डे बाय डे जो है वो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, वहीं कहीं पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कमी आई है, जबकि डीजल में 3.37 पैसे का इजाफा हुआ है और पेट्रोल की इस वक्त नई कीमतें हैं 334.18। तो यानी कि इस वक्त जो 335 से जो है वो 1 रुपया कम हो गया है पेट्रोल में, अलबत्ता डीजल के प्राइसेस में 3.37 रुपए का हुआ है इजाफा। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और इस वक्त कमी सिर्फ 1 रुपए की हुई है, जो कि आवाम को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि इस 1 रुपए का क्या होगा, क्योंकि महंगाई ऐसी है कि इस वक्त कराची में नहीं बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान बढ़ती ही जा रही है, और इसमें कहीं भी कमी पेशी हम लोगों के लिए बहुत जो है वो फायदेमंद है। So again, let's hope for the best. और भाई ताज़तरीन सूरत हाल के मुताबिक हमने आपको बताया था कि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो हम इस कम वक्त में क्या करेंगे, एक ट्रैक आपको सुनाएंगे और इसके बाद वापस आएंगे। तो आदव असलम की आवाज़ को शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी जनाब, और देर है दुरुस्त है, लेकिन हम इस चीज के लिए बड़े खुद को मनाते भी हैं, पटाते भी हैं और कहते भी हैं कि भाई बहुत सारी चीजें हम अपने फेवर में कर लें, अपने हक में कर लें, और जब हम उसके लिए खुद को राजी करना चाहते हैं तो पता ही चलता है बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हमें अलाउ ही नहीं करती कि जगह ये चीज हमारी फेवर में हो जाए. जैसे कि आप नहीं, आप 40 इयर्स के होके, 30 इयर्स के होके, या 50 इयर्स के होके, या सो ऑन, एक सर्टेन एज के बाद आपको पता है कि मुझे अब केजीज में एडमिशन नहीं मिलेगा. वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक कुछ भी आप चाहें, कुछ भी आप कर लें, आप उस एज को मीट ही नहीं करते, क्योंकि वो जगह आपके लिए है ही नहीं. इसी तरह बहुत सारी चीजों में जो चीज आपके लिए नहीं है, आप कितना भी चाहें, कितना भी कोशिश कर लें, उस जगह के लिए नहीं होता है. जहां बल्ब्स लगते हैं, वहां पे आप चाय के कप या वाटर बॉटल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जगह उसके लिए है ही नहीं. फिक्स हो सकती है, कुछ जुगाड़ हो सकती है, अगर हम बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज में कहें, लेकिन वो चीज उसके लिए है ही नहीं. इसी तरह हमारी पर्सनैलिटीज पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी गैदरिंग्स होती हैं, ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसा कल्चर होता है, या ऐसे लिबास होते हैं जो हमें सूट ही नहीं करते. हम जबरदस्ती अपने आप को उसमें इन करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम मिसफिट लगते हैं, या जबरदस्ती हम अपनी जिंदगी में किसी ऐसे को ले आते हैं जो हमारी जिंदगी में जरा सा मिसफिट होता है, या कभी कभी तो बहुत ज्यादा मिसफिट होता है. तो अपने आप में, अपनी चीजों में, अपने मामलों में हमेशा ये चीज देखा करें कि कौन सी चीज आप किसको ज्यादा अरसे तक कैरी कर सकते हैं.

0: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
5: बंद करो ना ढक्कन।
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और आपके टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This program is brought to you by
1: Femex laga aur bhul ja, Femex laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
4: Candyland, non-stop fun karte jao.
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sweep Be Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: And
5: Candyland, non-stop fun karte jao.
6: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
7: Candyland, non-stop fun karte jao.
8: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
9: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
10: Biggest hit.
9: Only on your favorite radio. FM 100. FM.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
5: बंद करो ना ढक्कन।
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: किसने कहा था पैसे बचा।

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja. And
1: Sweep E Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. And Candy Land, non-stop
2: fun karte jao. जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: Evening drive time.

0: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
4: Listeners tell us about FM 100.
5: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
6: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
4: Number one music station.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खास वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से

0: नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दें मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।

0: will take a short commercial break.
1: FM 100's time check. It's 8 p.m.
2: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
4: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving। No Frost, No Worries।
1: FM 100, Like us on facebook.com/FM247365।
5: FM247365। FM 100
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving। No Frost, No Worries।
6: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ Traffic قوانین کی پابندی کیجئے،

0: come on.
1: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स. प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतस से कैसे बचा जाए. सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 30 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तावन से पेश किया जाएगा. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
5: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है.

0: हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है और कैसे मिजाज शरीफ है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे और सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM 100। ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ। जल्दबाजी की मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ जरूरत नहीं है, आराम से ड्राइव करें सुकून के साथ, दूसरों को भी मौका दें जाने का। सिर्फ आप अकेले नहीं घूम रहे और भी है भाई इर्द गिर्द, और लोगों का ख्याल रखना आप। और लाइटें भी देख लें, हेडलाइट जला के अकेला एक मस्त आदमी जा रहा हूं ये बिल्कुल गलत बात होती है। अच्छा जनाब, मैसेज करने का तरीका बहुत सिंपल, मैं आपको बताता ही रहता हूं। KHI स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड कर देंगे 3636 बार। जनाब दिन है आज ट्यूसडे और ट्यूसडे वाले दिन जरा मिक्स ट्रैक होते हैं, नए पुराने सारे गाने मैं आपको सुनाता हूं। मैसेज करते हैं आप, डेडिकेशन बिल्कुल आप दे सकते हैं किसी को। रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि ना करें, क्योंकि पहले ही क्यू शीट बनी हुई होती है और जो जो लोग आप रिक्वेस्ट करते हैं ना वो सारे गाने उसमें शामिल होते हैं। अच्छा जनाब, बातचीत क्या होती रहती, कोई खास बात नहीं होती, मौसम के हाल होंगे और अगर जो कराची से घूम के वापस जा रहा था उसको कहेंगे बाय बाय, कैसा लगा कराची, बुराई नहीं करना, देखो कसम है तुमको है, गंदगी है मानता हूं मैं, लेकिन जाके कहीं भी ये बात कहनी नहीं है। इसके अलावा जो लोग कराची आ रहे हैं भाई, अब देखभाल के आना, अपने रिस्क पे आना, लेकिन खाने पीने में मैं कहूंगा कराची जैसा कोई शहर नहीं, तो भाई उनको वेलकम कहेंगे, जाने वालों को कहेंगे खुदा हाफिज, और जिन जिन लोगों की आज बर्थडे है उन्हें कहेंगे हैप्पी बर्थडे जनाब। कोई मना भी रहे हो या बिल्कुल ऐसी सुकून में ठंड प्रोग्राम, हाई गर्मी में ठंड, वैसे मौसम तो अच्छा हुआ है लेकिन सफोकेशन का क्या करें यार, ये बारिश होकर नहीं दे रही। चलिए दुआ करें हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, आज गेस्ट भी है, इनके साथ भी हमने जरा कुछ गपशप करनी है, गाने भी सुनाने हैं और मैसेज भी आपके शामिल करने हैं, और आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेक से, तो बस मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए। کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: لائک اس آن
6: Facebook.com/FM247365
7: ایکٹیو یمی ڈالر زبردست۔ سنو یاد۔

है जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस दोबारा मैं आपको बता दूं कि एचआर स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। जनाब आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक से और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आज के गेस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और गपशप करेंगे और आपके मैसेजेस शामिल करेंगे।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: 100 FM.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
6: This program is brought to you by
7: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: Active.
10: Yummy.
9: Adorable. 7.
11: Say I've got a crush on you.
12: Ready to be asked? So, listen, yaar.

0: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर भी। और जनाब जिन्होंने अभी रेडियो से टॉन किया उनको बता दें भाई डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं और संजीदा जी भी पूछ रही है कि ये जो मीठी गोलियां होती हैं इसका इलाज बहुत स्लो होता है। मैंने पूछ लिया, वो कह रही थी मैं बुढ़ी दुनिया हूं, आप सारा जवाब इन्होंने इसी गोलियों पर दिया। उन्होंने दूसरा सवाल ढूंढ के लाए संजीदा जी। अच्छा सर, शाहनवाज का मैसेज आ गया शरीफा शरफाबाद से। सर आप नहीं आए, मैं आया था फ्राइडे को। अरे वाकई में शाहनवाज भाई, पूछना तो था, कहना तो था। चलिए कोई बात नहीं शाहनवाज भाई, जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। जरीनूर का मैसेज आ गया, सलाम कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद आप आए, अच्छा लगा। सबको सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। एजाज मक्सी कहने एयाज भाई आपको, बिलावल को, जरी नूर को और सब लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया, आज जो है ना सुमैरा अल्ताफ है, इनको भी सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अयूब अफरीदी कह रहे हैं नाइस एयाज, आपको और डॉक्टर सुमैरा को और मुश को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम सलाम। जनाब इसी तरह मैसेज आते रहेंगे और डॉक्टर साहब से अगर आपने भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। वैसे मरीज किस तरह के ज्यादातर आते हैं आपके पास?
1: ज्यादातर फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत सारी इश्यूज के साथ आती हैं, लाइक हार्मोनल इश्यूज के साथ भी और फॉर अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए भी ज्यादातर। और एस्थेटिक क्लिनिक की अगर बात करूं तो वहां पर मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं।
0: मेल का क्या इश्यू ज्यादातर रहता है? बाल गिर रहे होते होंगे शायद इसलिए आते होंगे।
1: एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आती है और साथ ये प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि उनका बहुत ज्यादा आउटडोर काम होता है तो पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा इश्यू होता है उनको। ये दो इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। या फिर हार्मोनल एक्ने की बहुत केसेस आते हैं क्योंकि मेल्स में जो एक्ने होती है वो बहुत ज्यादा स्टबर्न होती है, उनको जाने में भी टाइम लगता है।
0: ये बात आपकी सही है, ये बात बहरहाल तसली से हम क्लिनिक में आके पूछेंगे, अभी तो हम जनरल ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा तो ये सब करने के बाद जनाब फिर टाइम कैसे मिल जाता है आपको होस्टिंग का?
1: क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता, वीक में एक दफा टाइम देना होता है या समटाइम्स अगर गेस्ट अपीयरेंस किसी शो में होती है एज अ डॉक्टर तो फिर टाइम थोड़ा सा मैनेज इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि मेरी क्लिनिक का जो टाइम है वो 1 PM के बाद का है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सो इस तरह से मैनेज हो जाता है।
0: अच्छा वो ये है कि ज्यादातर आपको शोज में मेरे ख्याल से एज ए डॉक्टर ही बुलाते होंगे कि भाई आपसे मशवरे या इस तरह के सीन होता होगा।
1: जी ऐसा ही है।
0: ऐसा ही हो गया, बिल्कुल जनाब तो सही हो गया। हम भी कभी कभी जो है अपने शो में आपको इसी तरह बुला लेंगे और कहेंगे भाई कोई मसले मसाइल लोगों के हैं तो वो हल कर दें। कुछ हमारे फोन का मसला है वरना तो लोग डायरेक्ट फोन कॉल पे ना आपसे पूछते कि भाई ये मसले हैं तो फिर बहरहाल आप मैसेज करके भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं एज इट इज मैसेज पढ़ दूंगा। अच्छा जनाब गपशप होती रहेगी लेकिन साथ साथ गाने भी। सुंदस जी हमें सुन रही हैं, सुंदस जी बहुत स्वीट सी हमारी कॉलर, क्या मैं तारीफें करूं इनको। और इनको एक अच्छा सा गाना जो है वो मैं डेडिकेट कर देता हूं और वो है कैसे। चलिए जनाब बहुत साथ साथ मैसेज का तरीका बता दूं कि चाय स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: All right, जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं और साथ साथ गाने भी मैं सुना रहा हूँ. गाने कैसे लग रहे हैं भाई? गाने पसंद आ रहे हैं?
3: हाँ, बिल्कुल.
2: क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्ती. मैंने ऐसा लग रहा है तारीफ कराई है.
3: नहीं नहीं, मैं यूजली सॉन्ग्स नहीं सुन रही होती, मगर आपकी कलेक्शन अच्छी है.
2: बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं जरा पूछना ये चाह रहा था, घर वालों की सख्तियां उख्तियां तो नहीं होती या क्या? कोई आराम से आपको इजाजत मिल जाती कि भाई होस्टिंग भी कर लें आप, ये भी कर लें?
3: बिल्कुल, परमिशन अगर नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर रही होती. और कॉन्फिडेंस घर वालों का ही होता है जो कि फिर बाद में मुझ में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. सो मेरी सिस्टर मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है.
2: सिस्टर का नाम तो लेते हैं, वो हर वक्त आपके साथ साथ रहती हैं, उनको उनका सपोर्ट रहता है.
3: शी इज माई वन एंड ओनली सिस्टर और उनका नाम है असमा अल्ताफ.
2: असमा अल्ताफ के लिए ढेरों तालियां, बहुत सारी
3: तालियां.
2: क्या बात है. नहीं, ये बात तो सही है, अगर फैमिली सपोर्ट रहे ना तो फिर बंदा जरा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है.
3: बिल्कुल.
2: और काम में भी जरा आप एंजॉय करते हैं.
3: बिल्कुल, ऐसा ही.
2: पीछे आप परेशान बैठे हो कि पता नहीं क्या होगा, तो वो बात भी सही नहीं होती. तो मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि अपनी बच्चियों को, खासतौर पर लड़कियों को बहुत सपोर्ट करें आप, और जो करना चाहते हैं पॉजिटिविटी भी आती है इससे, और पॉजिटिव कामों में आप भरपूर साथ दिया करें. और माशाल्लाह, वैसे एक बात है, अच्छी लग रही है एनर्जी आपकी. इतनी सी उम्र में आपने इतनी सारी चीजें कर ली. एक्टिंग रह गई, वैसे उसकी तरफ नहीं जा रही है आप, या किसी ने ऑफर नहीं की?
3: नहीं, मुझे लगता है शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी. और ऑफर तो थी इससे पहले भी, इससे पहले मॉडलिंग की भी ऑफर थी, बट बात यह है कि मेरा उस तरफ इंटरेस्ट नहीं था. और होस्टिंग के लिए जब कहा गया तो फिर क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड करना था, सो आई थॉट कि इससे ज्यादा जल्दी मैं लोगों तक अपने मैसेजेस पहुंचा सकूंगी, अवेयरनेस क्रिएट कर सकूंगी, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है.
2: तो अच्छा,
3: फिर मैंने एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छा काम किया इसने.
2: क्या बात है जनाब, क्या बात है. और मेरे ख्याल से डॉक्टरी भी साथ साथ, और वो भी इसी से रिलेटेड होस्टिंग भी आपकी चल रही है.
3: जी,
2: ये बड़ा अच्छा सपोर्टिव रहता होगा.
3: बिल्कुल, और इतने डॉक्टर्स आते हैं डिफरेंट फील्ड से आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको खुद भी सीखने को मिलती हैं, और जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप एक चैनल यानी बन जाते हो उन लोगों की प्रॉब्लम को सुनने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और एक्सपर्ट से कनेक्ट करने के लिए.
2: अच्छा, तो चैनल तो लोग आपको देखना चाहें कि भाई किधर आ रही है सुमैरा अल्ताफ, इतना जिक्र हो रहा है सुमैरा अल्ताफ का, वो होती किधर है तरह, ये तो पता चले.
3: वीनस पर होती हूँ मैं, ग्लोबल वन पर होती हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स पर जब एज अ गेस्ट होती हूँ तो फिर डिफरेंट चैनल्स पर होती हूँ. धरती टीवी है, मेट्रो है, और अब सैटेलाइट एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे चैनल्स हैं. सो
2: बहुत अच्छी बात है.
3: मैं अपलोड करती रहती हूँ जो भी एक्टिविटीज आ रही होती हैं. तो
2: अच्छा भाई, तो लोगों को बताएं जरा अपना आईडी, कौन कौन सी कहाँ पे देखना चाहें, अगर आपको इंस्टा बताना चाहें तो बता सकते हैं.
3: बिल्कुल, इंस्टाग्राम पर डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ के नाम से है, और फेसबुक पर भी डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ ऑफिशियल के नाम से.
2: चले जनाब, ये तो हो गया, अगर जिसने ढूंढना हो तो वो ढूंढ सकते हैं, और कोई मसले मसाइल हो. अच्छा, जो सुन रहे हैं उनको ये बताया ना कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो तो उनको आप सॉल्व कर सकती हैं.
3: हार्मोनल इश्यूज हैं, लाइक इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल फीमेल्स में, तो वो इश्यूज हैं. बच्चों के इश्यूज हैं, लाइक हेयर फॉल से रिलेटेड हो या फिर स्किन से रिलेटेड हो, एस्थेटिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, सारे लोग ही कनेक्ट होते हैं मुझसे, और कनेक्ट हो भी सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे डीएम में पूछ सकते हैं.
2: हाय हाय, ये संजीदा जी ने आपकी कोई तस्वीर भी भेज दी. वाह वाह, बिल्कुल संजीदा जी, यही वाली डॉक्टर
3: सही पहुंची हैं आप.
2: क्या बात है, फोटो बहुत अच्छी आई है. वैसे कौन से फिल्टर लगाए मैं, लेकिन वैसे भी अच्छी.
3: दिस इज AI, और आज हेपेटाइटिस डे है तो उसके अवेयरनेस के लिए ये पोस्ट.
2: भाई आज दे ना जरा कोई मैसेज दे हेपेटाइटिस के हवाले.
3: हेपेटाइटिस के हवाले से मैं यही मैसेज दूंगी कि ईट हेल्दी, और अगर आप क्लीन खाएंगे आपका लिवर क्लीन रहेगा, वो फंक्शन क्लीनली करेगा, और आप की ये जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी.
2: क्लीन तो खा ही रहे हैं, कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा तो क्लीन ही, इतनी महंगाई होगी. कुछ खा ही नहीं रहा बंदा भाई, वो तो क्लीन चल रहा है फुल टाइम. क्या खाऊं मैं, छोड़ो. तो अच्छा
3: नहीं, जंक ना खाएं, और स्पेशली मैं कहूंगी कि पानी का इंटेक करें. पानी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है. जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं उसकी तरफ आएं, लाइक कोकोनट वाटर है, लस्सी है, या फिर जो गन्ने का जूस है. ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हम बहुत पुरानी चीजें हैं जो पहले से मौजूद हैं, और हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं एक ऐसे फ्रिजी ड्रिंक्स के जरिए, या फिर हम कोलास की तरफ चले जाते हैं, तो वो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए और स्पेशली लिवर के लिए बहुत हार्मफुल होता है. और बाकी जो नेचुरल चीजें हैं वो आपकी लिवर को भी हेल्दी करेंगी.
2: चले जनाब, बातचीत होती रहेगी, लेकिन साथ साथ जरा टाइम चेक और छोटी सी ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
4: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
6: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
7: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi mazhabi firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
10: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। फरियाल जी का भी मैसेज आ गया, फरियाल खान फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम किंग अयाज ब्रो, आप कैसे हैं? फर्स्ट टाइम SMS किया आपके गेस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा जी, और ये कुछ सुनने वाले पूछ रहे हैं भाई कहाँ आए, अगर आपसे कोई ट्रीटमेंट करानी हो तो किधर क्लिनिक या किधर को वो भी तो बताए ना।
3: सबसे पहले तो फेसबुक पे कांटेक्ट करें, DM करें और DM से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और साथ ही क्लिनिक जो है वो DHA फेस 5 पर है, तौहीद कमर्शियल पर, और इसके अलावा फेस 2 पर भी है। तो जो कन्वीनियंट टाइम होगा और जो उस डे पर जहां पे मैं अवेलेबल होंगी तो फिर वहां पर आप आ सकते हैं, उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी।
2: चले जनाब, और उसके लिए थोड़ी जेब में पैसे होने चाहिए, फ्री में सिर्फ आप जाना दुआएं भी।
3: ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए लाइक जो जनरल इश्यूज होते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। फॉर फिजिकल कंसल्टेशन आपको प्री बुक अपॉइंटमेंट ही मिलेगी।
2: चले जनाब बहुत। और भाई संजीता जी तो आपके बारे में सारी डिटेल निकाल निकाल के जो है ना हमें बता रही हैं वो। क्या बात है, ये भी एक पिक आ गई आपकी,
3: यानी कि अच्छी वाली रिसर्च
2: कह रही। हाँ कह रही बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मैं प्यारी तो है जनाब।
3: थैंक यू जी, थैंक यू।
2: अच्छा जनाब, और इसके अलावा मैसेजेस पहुंच रहे हैं आपके मुस्तकिल और कुछ और भी सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल मैं शामिल करता हूँ। लेकिन भाई दोस्तों बात यह है कि ये हमने वो डॉक्टर वाला प्रोग्राम भी बना देना एकदम फुल टाइम जो है वो, तो गाने भी हम जरा शामिल करते हैं साथ साथ। और जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो मैं यही कोशिश करता हूँ इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव भी किया करें, और घर जाके जो है ना जरा घर वालों पे तवज्जो दो। दफ्तर की बातें दफ्तर में बिल्कुल पता चला घर वालों वो दफ्तर में बॉस ने डांटा तो घर में जाके शुरू हो गया ऐसा बिल्कुल है। इस पर भी कुछ जरा काउंसलिंग करें आप थोड़ी सी तरह, ऐसा होता है कि नहीं होता?
3: बिल्कुल ऐसा होता है कि अच्छा वैसे बहुत ही फेमस सी एक मीम भी है कि शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला, तो जिसे जहां मौका मिलता है वो वहां डॉन बन जाता है। तो डॉन ना बने प्लीज।
2: बिल्कुल जनाब, डॉन ना बनो तुसी, और खासतौर पर बेगम बच्चों के ऊपर ना फुल डॉन बन जाते हैं, तो ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। तो जाएं भाई इत्मीनान से घर के माहौल को,
3: उसको बैलेंस करने के लिए हमारी सोसाइटी में इस चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ वाइफ भी जो होती है वो डॉन बन जाती है।
2: ये वाइफ का वैसे कुछ इलाज है नहीं हमारे पास, कुछ भी कर सकती है।
3: मर्द पहले अपना इलाज कर ले, औरतों का इलाज बाद में देखें।
2: चलिए इसी बात ये वाला ट्रैक जरा।

0: active.
1: Yummy.
0: Adorable.
2: Zabardast.
0: Ye pyaas to suno yaar.
3: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
4: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
6: FM 24/7 365 FM 24/7 365 FM 100
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
7: Full volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
8: Oh, so loud.
9: जी वेलकम बैक. सुन रहे हैं फिर 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं. कादिर बख्श कह रहे हैं, कादिर बख्श बलोच आयाद भाई आपको और आपके गेस्ट बिलावल बिलावल को सूरज और तमाम लिसनर्स को. भाई सूरज चांद सितारे को नहीं, संजू मेरे ख्याल से लिखना चाह रहे हैं. संजू अच्छा जी और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कादिर बख्श भाई आपके मिजाज कैसे हैं, कहां गायब हैं और क्या कर रहे हैं? गायब तो मैं भी था इससे पहले कि वो मुझे कहते, मैंने कह दिया उनको. अच्छा जनाब. अच्छा कभी ऐसा भी होता होगा कि लोग आते होंगे, पहचान जाते होंगे टीवी पे, टीवी वाली बाजी तो लोग इसका भी कोई एडवांटेज ले जाते हैं, आप तो टीवी पे हमसे क्यों पैसे इतने ज्यादा मांग रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो?
10: पता नहीं क्यों मैं कहीं पे भी जाती हूँ वो अगर मास्क में भी होती हूँ तो जब मैं टीवी पर नहीं थी तब भी वो डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं मुझे ये नहीं समझ आता.
9: कुदरती शक्लें ऐसी होती है, डॉक्टर लिखा होता उनके मुंह पे, उनके मुंह ही डॉक्टर वाला हो जाता है. तो आप भी माशाल्लाह वो टैलेंट है कि आप अगर डॉक्टर ना भी होती ना, लोग कहते वो देखो भी डॉक्टर साहब जा रही है. होते बाज ऐसी होती है अल्लाह पाक की तरफ से, ये नेमत होती है वैसे इसको.
10: थैंक यू.
9: अच्छा जनाब, या तो लगता है बचपन से शौक था आपको, ये शौक वैसे हुआ कब? ये खास तौर पे होम्योपैथिक का कैसे शौक हो गया?
10: जब मैं कॉमर्स की स्टूडेंट भी थी तब भी मैं लिखती थी अकॉर्डिंग टू, अगर मैं यानी मुआशियात पढ़ रही होती यानी इकोनॉमिक्स पढ़ रही होती थी तो उनके कोर्स लिखने के साथ साथ अब लिख रही होती थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुमेरा था. तो मेरा माइंड वहीं पर था कि मैंने डॉक्टर बनना है. एंड जब एडमिशन हो गया तो जाहिर है फिर तो सारा का सारा फोकस वहीं होता था. और रात में जागने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं थी. 9 PM मेरा बिल्कुल ऐसा टाइम होता था कि बस अब सो जाना है. अच्छा. उसके आगे जागना नहीं है और पढ़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, नींद पहले. बट जब मेडिकल में एडमिशन हुआ तो जाहिर है रात में जागना, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, रूटीन को चेंज करना पड़ा. तब मैंने आपका शो सुनना शुरू किया और उसकी वजह से मैं लेट नाइट भी जाग रही होती थी और पढ़ रही होती थी.
9: हर बुराई में मेरा हाथ शामिल है कहीं ना कहीं. लेट सोना कोई अच्छी बात तो नहीं, लेट सोना अच्छी बात.
10: पढ़ना पढ़ना
9: हाँ पढ़ना तो
10: पढ़ने के लिए जाग रही होती.
9: और अगर आप लेट सोने के चक्कर में मेरा शो सुन रही तो ये कोई फखर की बात नहीं मेरे लिए.
10: एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया ना कि जो जागना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो वो जरूर शो सुने.
9: अच्छा मैं आपको बताऊं, 1 से 3 बजे वाला शो मुझे याद है, मैंने बहुत अरसे किया वो और उसकी नो डाउट यार लिसनिंग भी बहुत थी
10: और इंतजार होता था मुझे कि अब आपका शो आएगा. मिस नहीं करती थी, हेडफोन्स लेके पहले से ही रेडी रखती थी कि बिल्कुल जब शो स्टार्ट होना है तभी से मैंने ज्वाइन किया.
9: अच्छा वैसे एक बात थी, जब मैंने शो स्टार्ट किया तो उससे पहले ना लोग गजलों के शो करते थे रात के टाइम पे, बिल्कुल मनहूस माहौल, फुल टाइम ऐसे उदास माहौल बनाया हुआ होता था. बंदा कहता था फौतगी हो गई, अल्लाह जाने क्या हो गया, और गजलें सुनाए चले जा रहे हैं, सुनाए चले जाते. ये चेंज था.
10: जब कोई मुझे कहता था कि FM सुना करो, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, तो मैं कहती थी वो तो अजीब सी गजलें और गाने ही चल रहे होते हैं, कौन सुनेगा.
9: नहीं खैर वो इंग्लिश ट्रैक भी चलते थे उस वक्त, वो हमारे वो जुनेद मुमताज होते थे, वो इतना जबरदस्त शो करते थे वासा वासा पाकिस्तान, उनकी भी एक मकबूलियत थी. इसके अलावा पॉप गाने तो नो डाउट FM 100 की पहचान है. ये रात का जो 2 घंटे का जो टाइम होता था मेरे ख्याल से आपको मोस्टली उसी टाइम आपने सुना होगा शायद, तो 12 से 3 बजे तक तीन तीन घंटे के शो, तीन घंटे में बिल्कुल वो जो होस्ट है वो भी सोया पड़ा है और दूसरों को भी उसने नींद में डाला हुआ है। लेकिन एक बात है, उसकी भी एक ऑडियंस थी, ऐसी बात है, लोग शेर और शायरी फुल टाइम सुना सुना के एक दूसरे को पागल किया होता है।
10: उदास रूहें भी होती हैं, जो उदास,
9: लेकिन मैं एक बात बताऊं, बड़े तेज भी होते हैं, शायरी के चक्कर में हर बात कह देते हैं। हर बंदा जो है ना, शायरी के चक्कर में अपना मैसेज पहुंचा देता किसी न किसी को। ये जो शायर होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े तेज लोग होते हैं, हम इनको बड़े मासूम समझ रहे हैं।
10: अच्छा, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं भी समटाइम शायरी कर लेती हूँ, तो थोड़ा
9: काम छोड़ भी दो, कोई काम छोड़ भी दो, कोई काम तुमने नहीं छोड़ा, सब चीजें करे जा रही हो, शायरी भी कर लेती हूँ।
10: देखें, ये जो चीज है ना, खुद से चीज आती है, हम उसको रोक तो नहीं सकते ना।
9: बात तो ठीक है, बात तो ठीक है,
10: बस
9: लेकिन शायर लोगों को मैं दाद देता हूँ, जो बात बंदा सोचता रहता है कि मैं करूँ कि ना करूँ, शायर भाई अब जो है ना अपनी शायरी में पोएट्री में वो क्या डालते हैं सारे,
10: बहुत के अंदर।
9: ये बात तो आपकी बिल्कुल सही की आपने। इसी बात पे मुझे एक ये वाला थोड़ा सा ट्रैक मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा मुझे मजे का लगता है, चेक करें आप जरा।

0: है जनाब, उम्मीद है कि टाइम जो है ना आपका अच्छा गुजर रहा होगा और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं। 3636 क्या बात है, इस ट्रैक भी जो मैंने सुनाया थोड़ा सा अच्छा जी। रमजान पठान भाई के मैसेज आ गए। रमजान भाई कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से? अयाज भाई आपको और आपकी गेस्ट और बिलावल और सब सुनने वालों को सलाम। अयाज भाई बिलावल का मोबाइल नंबर तो मेरे को दे दो, मैंने ना उनसे मोबाइल लिया है ना नंबर लिया है, मैं किसी के नंबर नहीं लेता, सिर्फ मैसेज आते हैं यहाँ पे, नंबर बिल्कुल नहीं आते।
1: देखिए आपका शायर होना जरूरी नहीं, हिम्मत अगर आपकी हो तो आप ऐसे नंबर भी मांग सकते हैं।
0: बेचारे बंदे का नंबर मांग लिया, उससे तो बंदे से तो हिम्मत हो जाती है, खातून से जरा बंदा डर लग रहा होता है। रमजान पठान ने जो है ना वो बिलावल भाई का नंबर मांगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन खातून का नंबर मांगने के लिए जरा दिल गुर्दा जिगरा सब चाहिए होता है, लेकिन बहरहाल आजकल वो भी सबके पास है, ये बात मैंने नोट कर ली है। अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब आई हुई है, डॉक्टर सुमैरा, और इनको डिफरेंट चैनल्स पे आप देखते रहते हैं, चैनल्स के जरा सूरत हाल बताएं, ये लोग भी पैसे दे रहे हैं या बिल्कुल ऐसे इन्होंने कहा भी आ जाओ जरा फ्री फंड में? ये चैनल्स का ये बड़ा आजकल मैं देख रहा हूँ जरा रुझान हो गया, लोगों को मुफ्त में बुलाना शुरू हो गए, इस पर कुछ रोशनी डालें आप।
1: रोशनी क्या, टॉर्च भी डालूं तो कोई फायदा नहीं होगा, जो अंधेरा जहां पर है।
0: अच्छा अंधेरा एक बात है, आपको तो बेनिफिट है क्योंकि आप डॉक्टर हैं, अपने आप काम का जो भी है वो सिलसिला आप वहां पे प्रमोट कर सकते हैं, आप तो बेनिफिट में, लेकिन एक आर्टिस्ट जिस बेचारे को जो काम ही यही है,
1: नहीं
0: उसको भी फ्री में मिला रहे होते हैं।
1: चैनल्स को जरूर सोचना चाहिए और अपने आर्टिस्ट की जरूर कदर करनी चाहिए, जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसी तरह से वो अपनी स्किल्स के जरिए अर्न कर रहे होते हैं, तो उनका जरूर ख्याल रखना चाहिए।
0: मैं तो कह रहा हूँ बायकॉट करें ऐसे चैनल का, फारिक चैनल से बिल्कुल दूर रहे आप, है ना?
1: चले भाई आज से बायकॉट
0: करना, आपने नहीं करना, आपका तो फायदा हो रहा है, ऐसे चले जो दो चार आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। देखो बंदे बंदे पे वेरी करता है, ये जो चीज है ना आप पे अप्लाई नहीं होती।
1: हाँ मेरा जो मकसद है जाहिर है अवेयरनेस का है, सो उसके लिए प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, सो आई थिंक मेरा जो पर्पस था वो तो पूरा हो रहा है
0: और उसको जारी रखना है आपने, ये नहीं कि बिल्कुल आप छोड़ दें उसको,
1: इंशाल्लाह।
0: और आपने जाना ही है। अच्छा जनाब साथ में आज हम जिक्र कर रहे थे हेपेटाइटिस का, तो उस हवाले से जरा लोगों को बताएं केयर कैसे करें, सिम्टम्स क्या होती हैं, कुछ जरा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें, बेचारे ऐसे बीमार हुए घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता, जब पीक पे बीमारी होती है तो पता चल रहा होता है, बताइए।
1: ऐसा ही है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी हमने इस पर बहुत अच्छा एक अवेयरनेस सेशन किया था, सेमिनार किया था पीसी में, जिसमें डॉक्टर्स भी थे जिनको हमने अवेयरनेस दी थी, लाइक हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी में इस कैंसर को यानी हेपेटाइटिस को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और अल्टीमेटली किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि क्लीन जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए। इसका असल मसला ये होता है हेपेटाइटिस का कि इसके कई टाइप्स होते हैं, यकीनन आप सब भी जानते होंगे इस हवाले से कि बी सी और डी काफी ये फेमस हैं, लोगों को इसके बारे में पता है, बट सिम्टम्स शुरू में जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हों, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं लग रही है सही तरह से, आपका यानी हाजमा नहीं होता, ब्लोटिंग हो सकती है, डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आए। सो समटाइम्स जो बेसलाइन टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो एवरी नाउ एंड देन एटलीस्ट एक साल में एक दफा जरूर करवाएं, और जो भी आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि आपको अगर खाना खाने के बाद भी आपको वीकनेस फील हो रही है और प्रॉपर नींद लेने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी लिथार्जिक हो रही है और खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा या सही तरह से डाइजेशन नहीं हो रही है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देखना बहुत जरूरी होता है। लोग ये समझते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है इस वजह से, हो सकता है लिथार्जी हो रही हो, बट देखना जरूरी है इन चीजों को।
0: चलें जनाब बेहतरीन बात हो गई भैया, तो जरा सा अपने पे भी तवज्जो दे दो, और जो डॉक्टर साहब कह रही है ना सुस्ती फील हो रही है या कुछ ऐसा फील हो रहा हो तो जरा डॉक्टर को चेकअप करा लें अपना। उस चेकअप का क्या नाम है, उसको जो हेपेटाइटिस के लिए जाएं तो कौन सा होगा टेस्ट?
1: सबसे पहले तो देखें बेसलाइन जो टेस्ट डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं, पहले तो सीबीसी सिंपल सा एक टेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देते हैं तो ये मत समझे कि इससे आपका खून कम हो जाएगा, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसको यानी वायरल भी है ये मीम के ब्लड की डेफिशिएंसी बता दी डॉक्टर ने ब्लड निकाल के, सो डॉक्टर में थोड़ा ट्रस्ट करें और टेस्ट करवाने के बाद।
0: बंदे ने कल परसों किया था ट्रस्ट, दुनिया से निकल गया, अब उसका ट्रस्ट बन गया। मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो उनको मामूली सी कोई वो गिरे कहीं चोट वोट लग गई, सबसे पहले उन्होंने जाते उनका टेस्ट करना शुरू हुआ, आधे घंटे में सारे टेस्ट हो गए और दूसरे घंटे में उनकी मौत हो गई, समझ नहीं आई कि क्या हुआ। یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا انہوں نے.
1: یہ تو خیر مجھے بھی نہیں پتا,
0: میں بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل صحیح بات ہوگی. بہرحال اللہ میاں اچھے ڈاکٹر کی طرف لے جائے,
1: بالکل
0: ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو یہی انجام ہوگا. اچھا بھائی مہجبین آ گئی اسلام آباد سے. مہجبین کیسی ہیں آپ, ہمیں سن رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں السلام علیکم, ویلکم, کیسے ہیں آپ؟ مہجبین میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیے کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج آئی ہوئی ہیں اور آپ بھی تھوڑا تھوڑا سست بیمار بیمار, اب بتائیے کیا صورت حال ہے؟ ان کے ساتھ بھی مسئلے ہیں ویسے, اپنے میسج میں بتاتی رہتی ہیں, مگر مجھے لگتا ہے اللہ نے چاہا تو اب ٹھیک ہو گئی ہوں گی
1: انشاءاللہ.
0: ایاز بھائی شو از آسم. صاحبزادہ بھائی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اسی بات پر ایک خوبصورت سا ٹریک آپ کے لیے, اور وہ ہے کیسے,

0: है जी, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ डॉक्टर सुमैरा आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत हो रही है। और डॉक्टर सुमैरा जी, फरियाल खान ने आपसे कुछ पूछा है, वो कह रही है कि मुझे हेयर फॉल हो रही है और फेस पर एक्ने भी है, प्लीज डॉक्टर कोई सजेस्ट करें, डॉक्टर सजेस्ट करने या कोई इनको कोई मशवरा दें। अच्छा सा
1: मशवरा ये है कि आप मुझे फेसबुक पर डीएम कर सकती हैं अपनी कंडीशंस। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं लाइक सीबीसी है या जिंक विटामिन बी लेवल चेक करवाया है, विटामिन डी लेवल चेक करवाया है, कोई भी अगर टेस्ट करवाया है तो आप वो मुझे शेयर करें सो दैट आपकी प्रॉपरली कंसल्टेशन हो सके और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करें।
0: जरा दोबारा बताएं, हो सकता है ना सुना।
1: फेसबुक पर डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ ऑफिशियल।
0: चले जनाब, ऑफिशियली काम सारा हो रहा है। अच्छा जी अयाज भाई, आपका शो सुनकर ना दिल बाग बाग हो जाता है।
1: गार्डन
0: हो गया। गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। रशीद भाई वालेकुम सलाम, और आपका प्यार है मोहब्बत है और क्या कह सकता हूँ मैं। और इसके अलावा जनाब रानी जी कह रही कि कोई सर पे शायद चोट लगी थी जिसकी वजह से इनकी जो है ना ये प्रॉब्लम हुई उनके साथ। अच्छा सर में भी ऐसा हो जाता है कि
1: जी ऐसा हो जाता है और डैमेज होने की वजह से नर्व जो होती है वो उसकी यानी उसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं सो इस वजह से हुआ।
0: अच्छा आजकल एक और चीज भी है जो मैं नोट कर रहा हूँ, अक्सर लोग जो मेरे इर्द गिर्द जान पहचान वाले जो दुनिया से बुजुर्ग खास तौर पर वॉशरूम में गिर जाते हैं, ये आपने बात नोट की है क्या? ये अक्सर हो जाता है।
1: अब क्योंकि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है कि हड्डियां जो हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जो टीन एज में जो हड्डियां डेवलप हुई होती हैं वही जिंदगी भर चलती हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि डाइट हमारी उस तरह की नहीं रही जैसे होनी चाहिए थी, जैसे पहले होती थी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मसला आता है ऑस्टियोपोरोसिस का, जिसे हम कहते हैं आम जबान में हड्डियों का भुरभुरापन। अब वो आमतौर पर तो नहीं पता चलता लेकिन समटाइम्स जब ऐसे आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो पता चलता है कि हड्डी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई। कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है वो कपड़े झाड़ते हैं उठते हैं चले जाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां अंदर से मजबूत होती हैं।
0: और हम उनको डीट कह रहे थे, बड़ा डीट है यार, इतनी जोर की चोट लगी फिर भी कपड़े झाड़ता हुआ निकल गया।
1: बिल्कुल, और जो हमारे जो बुजुर्ग हजरात और खवातीन होती है उनके साथ ये होता है कि हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं, फिर फिसलते हैं गिरते हैं या झटका लगता है तो फिर हड्डी टूट जाती है और फिर वो रिकवर उस एज में नहीं कर पा रहे होते हैं। वरना हमारी हड्डियों में भी रिकवरी बहुत अच्छी होती है अगर हम सही तरह से उसका ख्याल रखें। और साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं मैं उनको जरूर कहूंगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएं, उससे आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे, आपकी जो बोन्स हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस का इशू आ रहा होता है विद अ गुड डाइट आप उसको बेहतर कर सकते हैं क्योंकि हड्डियों में भी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। अल्लाह ताला ने नेचुरल जो सिस्टम रखा है बहुत अच्छा रखा है।
0: तो मैंने ये बात इसीलिए की कि भाई जिनके इर्द गिर्द बुजुर्ग हैं खासतौर पर जिनकी उम्र ज्यादा है तो यार अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, जब भी वॉशरूम जाते हैं या इस तरह की चीजें स्लिपरी ना हो, ये भी कोशिश करें कि बाजू का स्लिप भी हो जाते हैं
1: वॉशरूम में जो चप्पल या फिर जो भी यूज करते हैं फुटवेयर उसको ऐसा होना चाहिए जो कि जिसकी ग्रिप अच्छी हो, वो फिसले ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि ये टाइल्स जो लगी हुई होती है वो बहुत स्लिपरी होती हैं और अगर वेट हो जाए तो वो और ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो बच्चों और बड़ों सबके लिए यही बेहतर है कि अपनी हड्डियां बचाएं और ग्रिप वाले फुटवेयर का इस्तेमाल।
0: चलो जवान आदमी या जो भी है वो तो अपनी जगह सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन बुजुर्गों की जो बात है काफी सारे बुजुर्ग जो है ना
1: उनको एक नया एडवेंचर मिल जाता है।
0: मैंने वो सुना काफी सारे बुजुर्ग ये कारण बना दुनिया से रवाना होने का, तो फिर बाद में पता क्या आप लोग बोले ये तो बस अल्लाह ने नसीब में लिखा था इसी तरह जाना था, तो थोड़ा सा एहतियात कर लें दोस्तों, बहुत जल्दी है जिसको तो फिर वॉश ना करें उसको, तो मैं ये कहूंगा थोड़ा सा केयर करें। अच्छा जनाब इसी बात पर छोटी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद।
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
5: FM 24/7 365
6: active yummy adorable 7
3: तो सुनो यार।

0: हाय हाय, कब तक दिल की खैर मनाओगे। और अली सेठी साहब, क्या बात है इनकी, जबरदस्त ट्रैक इनका। यूसुफ भाई आ गए, यूसुफ पापोश से तमाम सुनने वालों को सलाम, और आंटी चाची उरूसा गुलबानो सबको सलाम कह दिया। वालेकुम सलाम भैया, वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, और रानी जी पूछ रही है कि डॉक्टर साहबा का जो है वो स्टार क्या, बताइए स्टार क्या है आपका।
1: मेरा स्टार है पाइसेस, पानी हूँ, पानी की तरह बहती हूँ।
0: पानी की तरह बहती चली जा रही है, और वैसे भी बारिशों का सीजन है, पानी का बहुत ख्याल रखना है आपने। और आजकल तो लाहौर पूरा पानी पानी हुआ हुआ है।
1: देखिए उस पानी में और इस पानी में बहुत फर्क है।
0: हाँ, ये गल तो सही की थी, बिल्कुल सही की थी, लेकिन लाहौर वाले दोस्तों, मैं आप लोगों के गम में बराबर का शरीक हूँ। नजर लग गई लाहौर को भी, कितना लाहौर को कहते लाहौर लाहौर है, बड़ा बेहतरीन है ये है, लेकिन इतना पानी यार।
1: आई विश कि वो जल्दी क्लियर हो, जो वो शहर की ब्यूटी है वो दोबारा से
0: कुछ भी हो यार, हमारे मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत शहर लाहौर, लेकिन लोग परेशान हैं, घरों का बुरा हाल हो गया है।
1: अच्छा वैसे लाहौर वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त होता है, फैसलाबादी का तो चलो फेमस है, लेकिन लाहौरियों का बड़ा जबरदस्त होता है।
0: कमाल कमाल, खाने पीने के शौकीन, और बस जुगते लगवा लें आप उनसे टाइट, उसमें हम लोग तो बस उनसे सीखते रहते हैं चुपचाप। अच्छा जी, टाइम जो है स्पीड से गुजरता चला जा रहा है, गाने इतने सारे, डॉक्टर साहब आपसे गप्पों में ना गाने शाने सब रह गए। ये देखिए, ये गाना भी सुनाना था लोगों को।

0: है, वो वाली सारी चीजें हैं जो कि मुझे समझ नहीं आती. सो शी इज माई मेंटर एज वेल.
1: चलिए अच्छा जनाब, आप बहुत सारे गाने ऐसे थे जो प्ले होने से रह गए, जैसे कि ये एक ट्रैक था, ये भी थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ और उसके बाद सुन जा. खुदा हाफिज वाली जरा स्पीच आपने रेडी कर लेनी है डॉक्टर साहब, ठीक है?

0: हाय हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त ट्रैक, डांस करने को दिल कर रहा है। फुल टाइम एनर्जेटिक सॉन्ग। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने का। संजीता जी क्या कहने, कहाँ चली गई आप, कोई मैसेज बीच में नहीं आया, अब आया।
1: वो रिसर्च करने गई है।
0: अस्मा जी के लिए तालियां, उन्होंने कहा अस्मा जी बेल्डन बहुत अच्छे
1: से भी तालियां।
0: चले जनाब, और बेहतरीन शो, बड़ी मेहरबानी आज, क्योंकि जरा डॉक्टर साहब आई हुई थी इस वजह से बेहतरीन हो गया। तो डॉक्टर साहब जाते जाते क्या कहना पसंद करेंगी?
1: जाते जाते ये कहूंगी, सबसे पहले तो आपको अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और FM 100 का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सलाम भी किया, वेलकम भी किया और बहुत सारी बातें भी की, कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए सबको ही। अपना, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपनी नींद का स्पेशली जरूर ख्याल रखिए, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, 90% जो आपकी हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो इस चीज का अगर ख्याल रख लें तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है।
0: चले जनाब, क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ आपका कि आप तशरीफ लाई, इतनी अच्छी गुफ्तगू तो खैर हमने क्या से इतनी संजीदा करनी थी, इसी लाइटर मूड पे आपने अच्छी अच्छी बातें जो है वो हमसे शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी
1: इंशाल्लाह बहुत मजा आया।
0: चलें जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपका शुक्रिया कि आप आई और इतनी बातें जो है बर्दाश्त की। चलें जनाब, इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाजत। और जाने से पहले नदीम भाई को वेलकम कहेंगे, नदीम अख्तर इसके बाद जबरदस्त सा शो लेके आ रहे हैं। राइट जनाब, अल्लाह हाफिज़, रब।

वेलकम बैक आएंगे आप दिल की अंजुमन में, हुस्न बनकर आ गए। क्या गाना है भाई, क्या गाना है, रूना लैला की आवाज। रूना लैला का नाम आता है तो हमारी एक बहुत ही प्यारी लिसनर रंजू की याद आती है, उनको रूना लैला बहुत पसंद है, तो ये भी गीत हम उनके नाम करते हैं और रूना लैला के जितने गीत चलेंगे उनके नाम कर देंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ। तो जनाब कोई ना कोई सवाल मैं फ्लोट करता हूँ, आप देते हैं उसका जवाब, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा, हल्की फुल्की सी चर्चा करते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आपके खानदान में, आपके गली मोहल्ले में, आपके कोई जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता, ऐसा इंसान होता होगा, चाहे वो खातून हो यानी कि औरत हो या मर्द हो, कि जिसके बारे में ये मशहूर होता है भाई इसकी जुबान बड़ी काली है। अब काली जुबान वाला शख्स, उसकी जुबान काली नहीं होती बेसिकली, लेकिन उसको काली जुबान वाला इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप बताएं। ठीक है भाई, भाई एक तो इंसानों के हवाले से सवाल कर लेते हैं और दूसरा जानवरों के हवाले से, मतलब दो सवाल बन गए ये, मतलब जानने वालों में, आगे पीछे मोहल्ले में, खानदान में, कहीं भी कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसको कहते भाई इसकी जुबान बड़ी काली है। काली जुबान क्यों कहते हैं, एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा वो कौन सा जानवर है जिसकी जुबान हकीकत में काली होती, काली रंग, काले रंग की जुबान होती है उसकी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो ये सवाल दो तो नहीं, एक ही सवाल है, उसके दो रुख है, तो ये आपने बताना है मुझे 3636 पर, के चाहे स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर। तो बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले फीदा काटा है आज हैरत अंगेज तौर पर, अयूब आफरीदी साहब ने कह रहे जान जिगर या हबीबे, आपको सबा गुल को, हिना गुल को, मुश्क महनूर को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे प्यारे से शहजादे भाई यूसुफ भाई पापोश से भी आ गए हैं, सलाम की बात कर रहे हैं तमाम सुनने वालों को, FM 100 की तमाम फैमिली को, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी, चाची, अरूसा, गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा है। भाई आंटी का जिक्र आया तो मैं आप सबको बता दूं, मेरी प्यारी सी आंटी बिल्कुल ठीक ठाक है, माशाल्लाह से पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि आप मेरी प्यारी सी आंटी के लिए दुआ नहीं करेंगे, दुआ कीजिएगा। और आंटी ने खसूसी तौर पर जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको फर्दन फर्दन फर्दन सलाम कहा है, प्यार कहा है और ढेरों दुआएं दी हैं सबको। और जनाब आगे बढ़ते हैं, सलाम कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है हमारी प्यारी शहजादी बहना जरीन नूर ने। अरे वाह जी वाह, हमारी बहना भी जल्दी आ गई यार, क्या बात है क्या बात है। और एक और हमारी बहन फैसला बात तो कह रही है, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों दुआएं दी हैं और तमाम हसीन तरीन समातों को भी मेरी तरफ से सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। अच्छा भाई एक गाने की फरमाइश की है इन्होंने, पंजाबी सॉन्ग है और मूवी का सॉन्ग है, और इसके लिए मेरी बहना थोड़ा टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा ये, और हम चलाएंगे आपके लिए, यानी कि समझ रही है ना आप। फिलहाल हम आपको वैसे ही कोई दूसरा पंजाबी गाना सुना देंगे, लेकिन ये गाना भी चलाएंगे, ये नहीं है वैसे जो भी चलेगा। और रानी हुसैन मेरी प्यारी सी बहन कह रही है सलाम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मुस्कुराती रहो, यानी कि समझ रही है ना।

0: तू ही ते जानू दिया सोचा दी तस्वीर है,
1: तू ही ते रेशमा दे खाबा ने ताबीर है,
0: तू ना लती ते जानू ने गवाच जाना सी,
1: तू ना मिलता ते रेशमा ने मर जाना सी।
0: मैनू यकीन है रेशमा, रब ने तेनू मेरे लिए बनाया है।
1: जानू ऐसे लिए ते रब ने तेनू मेरे नाल मिलाया है।
0: साडा मिलाप ते हो गया रेशमा, हम दुआ करी असी कभी ना पिछड़िए।
1: शाला विछोड़ा नुआक लग जाए ते मिलाप ते फुल हमेशा खिड़ते रहे।
0: रेशमा वादा कर, तू मेरी है ते हमेशा मेरी ही रहेंगी।

वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको ढोला अजला थुर इश्मा थेरी। तो जनाब आई होप कि ये गाना आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके आ रहे हैं KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। और हमारे खानदान में भी एक खातून थी जो बात कहती थी वो फौरन पूरी हो जाती थी, उन्हें भी काली जुबान वाली कहा जाता था। काली जुबान एक मुहावरा भी है आम बोलचाल में। काली जुबान उस शख्स के लिए कहा जाता है जिसकी मनफी बात या बददुआ सच साबित हो जाए, हालांकि इसकी कोई साइंस या दीनी हकीकत साबित नहीं होती। ये सिर्फ एक आवामी अकीदा और मुहावरा है। नौरीन बहना ने ये डिटेल बताई है। गुड है जी, गुड है। मैंने जैसे कि पूछा था कि इंसानों में काली जुबान वाले को काली जुबान क्यों कहा जाता है, तो इस हवाले से उन्होंने तफसील बताई है। और कौसाए यानी कि फरीदा बुरहानुद्दीन हमारी प्यारी सी बहना भी आ गई हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कल हम आपको याद भी कर रहे थे। सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है कि वो कौन सा जानवर है कि जिसकी वाकई में हकीकत में जुबान जो है वो काली होती है। और रानी कहती हैं कि जी उन लोगों की जुबान से निकलने वाली हर बात बुरी वक्त पूरी हो जाती है, काली जुबान वाले कहलाते हैं। तो है कोई आसपास काली जुबान वाला? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है और तबीयत कैसी है आपकी? ये है हमारे नवान साहब बल्दिया से। कहाँ गए थे नवान, कल आप क्यों नहीं आए? खैरियत ही कल जी हम आए, मैंने 11:30 तक वेट किया था, 11:30 को ही मैं आया था, बस कुछ आधा घंटा लेट हो गए थे। और इरफान मेमन शहजादे आगे हैं, स्वीट सोनियों को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल हो। ऑल फैमिली और मेमन कजन्स को एक ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा। और कह रहे हैं मैं नया लिसनर हूं। भाई नए लिसनर कैसे हो तुम? और शादी में जूते की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपा लिया करो, 5,000 की जगह 50,000 भी देगा, सोच बदलो पागलो। ये अय्यूब आफरीदी साहब ने भेजा, बड़ा जबरदस्त चीज भेजी है भाई आप। ये बात भी सही है, लेकिन मोबाइल अपने जेब से या अपने हाथ से बंदा इधर उधर करे तो बात है ना, छुपाए ना, मोबाइल की तो जान इंसान खुद नहीं छोड़ता, बिस्तर में भी साथ होता है। अच्छा जनाब, और आई अल्लाह जी, इतने प्यारे प्यारे से आपके इतने सारे मैसेजेस। यूसुफ भाई का सिर्फ मैसेज था, ये सिर्फ यूसुफ भाई दूसरे वाले हैं, हमारे पापोश वाले यूसुफ भाई नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, माय नेम इज यूसुफ। अजी बिल्कुल हमें पता चल गया था, आपने सिर्फ यूसुफ भी लिखा था तो हमने समझ गए थे कि ये हमारे यूसुफ भाई हैं, इनका नाम यूसुफ है। और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अलीजा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काली जुबान वालों की नजर बहुत लगती है। और वालेकुम अस्सलाम लाला सबकुल कह रही हैं। अब जुबान से नजर का क्या ताल्लुक है? सबक क्या हो गया तुमको? नदीम ब्रो आपका शो फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर। अरे भाई ये नंबर शंबर नहीं डाले यार, मैं मान ही नहीं सकता, ना मेरा ना शोभी भाई ना अयाज भाई और कितने जितने भी आरजे, सबका अपना अपना मकाम है, अपनी अपनी बात है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है मेरे शहजादे। और शोभी भाई की तो बात जहां तक करें ना, तो शोभी भाई तो उस्तादों में से हैं भाई, ग्रेट। अयाज भाई भी अयाज भाई दूसरे उस्ताद है, उस्ताद है भाई साथ। और प्लीज क्या लिखा हुआ है ये मैं कहता हूं लेकिन आप क्या कहते हो ये बताओ। सलीम मेमन बिरयानी वाले कह रहे हैं, तो सलीम मेमन बिरयानी वाले मैंने जो आपने जो कहा वो मैंने पढ़ा नहीं खुद, क्योंकि मैं इसको कैटेगराइज नहीं करूंगा, और मैंने जो कहा वो आपने सुन लिया कि हमारे जो शोभी साहब हैं वो उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, बाबाए FM 100 हैं, और अयाज भाई भी वो वाले उस्ताद हैं, उस्ताद भाई उस्ताद है वो भी, द ग्रेट अयाज अहमद। यार भाई अयाज बहुत ग्रेट है भाई। अच्छा जी रेहान हूं और सुन रहा हूं पाकिस्तानी सॉन्ग,
इंतजार संडे एसएमएस करता रिकॉर्ड करा है। अच्छा इंतजार मूवी का गाना सुनना है आपने मेरा ख्याल है रेहान। आज के शो में तो आपको पता ही आप सुनते तो हैं रिकॉर्ड भी करते हैं, तो रेहान आपके लिए इंतजार मूवी का गाना चला देंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर बड़े बेहतरीन अपने दौर की सुपर डुपर हिट मूवी थी। जब तक चुप थे तब तक अच्छे थे, थोड़ा सुना क्या दिया हम बुरे बन गए सबागुल। ये क्या बात हुई, ये किसके लिए लिखा है सबा, जरा मुझे बताना तो सही। और जनाब आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने बार, उम्मीद करते हैं कि आपको आएगा ये पसंद। कहां गया ये रहा।

वेलकम बैक कहेंगे यार, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, लिहाजा ये मैं नहीं सुनाऊंगा। है जी, आपको हम दूसरा गाना सुना देंगे, ये वाला सुना देंगे। अब इसकी भी रिकॉर्डिंग खराब हुई। हाँ, बेहतर है नाहिद अख्तर की आवाज आप सबके लिए।

0: is facebook.com/FM247365. FM247365.
1: वेलकम बैक सुनियो तरके उल्फत का सिला हाय हाय मुझे वह गाना बड़ा अच्छा लगता है. ओके ठीक गाना और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. और अब जो है आपको अच्छे गाने मिलेंगे, बहुत ही अच्छे गाने. मैं काफी देर से जो है वो तलाश में था अच्छे अच्छे ट्रैक्स और आज सुनने को अच्छे मिलेंगे ट्रैक्स और आपके मैसेजेस भी सुनने को बड़े अच्छे अच्छे से मिलेंगे. और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब. अच्छा जी, सॉन्ग की फरमाइश की है जरीन नूर ने, हमारी प्यारी सी बहन ने, और संजू को डेडिकेट करने के लिए गया. लेकिन आज संजू गायब है. संजू कहां गायब है आप, आ जाइए. और भाई गफ्फार साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माय लवली ब्रदर, सबको सलाम. दुनिया हर रोज चांद तक पहुंचा रही है. नरीम भाई कल आप शो में नहीं पहुंच सके. आपने सॉन्ग नहीं फेंका, फेंकना भूल गए. मैं आसमान में तारे गिनती करता रहा. अल्लाह आपको हर दो पैरों वाली मखलूक की काली जुबान से बचाए. आमीन. दो पैरों वाली मखलूक से, मखलूक की काली जुबान से बचाए. बहुत आला भाई, बहुत आला गफार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके मैसेजेस अच्छा लगा, मैसेज अच्छा लगा. और अमीन भाई आ गए हमारे शहजादे, सलाम की बात कह रहे हैं. शो वीआईपी बिंदास, बोले तो जगास. स्वीट फैमिली को सलाम कहा है उन्होंने और सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए भी कहा है. मेरी हसन खान साहब एक बार चले आओ,
2: एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना.
1: अच्छा जनाब, कोशिश करेंगे कि आपकी ये फरमाइश पूरी हो. लाला कह रहे हैं कि आपके शो में भी एक काली जुबान वाली लिसनर है. हाय लाला, ये बात नहीं किया करें, सब प्यारे प्यारे लोग हैं. और आगे बढ़ते हैं. अक्सा आ गई हैं और कह रही हैं सलाम, क्या हाल है आपके जिम में? बिल्कुल ठीक ठाक. तबीयत कैसी है? ओके टेक. दो दिन से मेरे मैसेजेस आप तक नहीं पहुंचे, मैं शो सुन रही हूं, सुनती हूं. अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे. सब सुनने वालों को सलाम का अक्सा. ये कैसे हो सकता है भाई? चले ऐसा हो भी सकता है वैसे, लेकिन शो सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपको याद करते रहेंगे साथ ही साथ. नदीम भाई हमारे मशरे घर किसी की तीन चार बातें सही हुई होंगी, उसे काली जुबान वाले मशहूर कर देते हैं साहबजादा साहब. कहने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में अगर किसी की दो तीन चार बार बातें जो है वो दुरुस्त साबित हो जाएं, ऐसे बोल दिया उसने कल वहां पर बम फटेगा, कल बारिश होगी, ये बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता. ये इसी तरह मोहब्बत में

मोहब्बत में वो होगा क्या होते हैं मोहब्बत में, यानी कि जलील ख्वार जिसको कहते हैं, वो होगा, इसको मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे मिसाल के तौर पर किसी ने हमारे माशरे में कोई बंदा इस तरह की बातें कर रहा और वो सही साबित हो गई कुदरती तौर पर, तो उसको काली जुबान वाला कह देते हैं, मशहूर कर देते हैं। ये है साहबजादा साहब की बात। अच्छा नदीम भाई, आपका न्यू लिसनर यूसुफ, आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से सुनता हूँ, आपके प्रोग्राम सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाय अल्लाह जी, क्या बात है, FM 100 के ये बड़ी तारीफ लिखी उन्होंने, मेरी बड़ी तारीफ लिख दी है। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, सो स्वीट, लव यू यार, ये आपकी हुस्ने समात है जनाब। एने सुने हो वहीद मुराद की फिल्म परख का कोई, अरे भाई वाह नवीद साहब, हमने आज जो है वो ये बेल बंद नहीं की और आप हमेशा की तरह ही हमारे छोटे भाई नवीद साहब जरूर कॉल मारते हैं शो में, और देखिए फिर आपका हम जिक्र भी कर देते हैं। अच्छा जी, तो परख फिल्म के हवाले से क्या कह रहे हैं, कोई गाना चला दीजिएगा, ये हमारे सलीम मेमन भाई खारा दरवाले कह रहे हैं। बिल्कुल चला देंगे जनाब, फिल्मों के हवाले से यार मैं बात कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, मैंने सवाल जो किया था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी हकीकी तौर पर, यकीनी तौर पर जुबान काली होती है, हैं जी थे हैं जी, तो इसी बात पर गाने की जानिब जाए या ना जाए, बिल्कुल जाएंगे जनाब, नहीं बल्कि कुछ मैसेजेस आपके ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। इनामुल हक मेरा शहजादा आ गया है, कहने अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, आपके वालिदे मोहतरम कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, और अदब से मेरा उनको सलाम अर्ज कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम आंटी चाची कायनात कोमल अरूषा संजीदा सलीम भाई और लाला, सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम और अदावर्स कहा है जी थे हैं जी। इनाम भाई कहाँ गायब हैं, बहुत दिनों के बाद आए आप। अलीजा कहती हैं, भाई मैं बहुत पुरानी लिसनर हूँ बट मैसेज फर्स्ट टाइम किया है। अलीजा जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो मेरी बहना, थैंक यू। अच्छा, अलीजा नाम की बहुत सारी हमारी लिसनर्स आती रही जाती रही, लेकिन ये हमारी पुरानी लिसनर हैं और इन्होंने कहा है कि ये खामोशी से सुनती है, तो ये भी एक किस्म का शमूलियत इनकी जो है वो पहली दफा हुई। और हमारे एक और यूसुफ भाई आ गए हैं, तो यूसुफ भाई हमारे एक यूसुफ भाई हैं पापोश वाले, तो आप हमारे सिर्फ यूसुफ भाई, तो अब यूसुफ भाई पापोश वाले को तो हम अक्सर याद करते हैं, तो उनके साथ साथ आपको भी करते रहेंगे। नदीम भाई आपका न्यू लिसनर यूसुफ, ये वाला मैसेज दोबारा आ गया है जनाब। और नदीम भाई मैंने सुना है कि काली जुबान वालों की नजर बहुत लगती है और बुरी बात भी सच्ची हो जाती है सबागुल, ये इस हवाले से मैंने चर्चा जो करूंगा वो आखिर में करूंगा, ये नजर के हवाले से बात करें, नजरें बद तो होती है 100% होती है, अब ये जरूरी नहीं है कि उसकी जुबान भी काली हो, ये एक अलग मामला है। अयूब लाला कह रहे हैं कि जिगर सवा गुल हेना गुल मुश्क महनूर के नाम, कोई भी सॉन्ग अपनी मर्जी से कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे जनाब, बिल्कुल कर देंगे। और सलाम सुने हो, कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसा कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, बंदा पूछे प्यार है या मकान, सलीम मेमन आ गए ये, और कह रहे हैं कि मैं पसंद तो सबको आ जाता हूं लेकिन मुझे बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता। यार ये बात बड़ी जबरदस्त, पसंद आना और बर्दाश्त करना, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आपने तो मजाक में बात की है लेकिन हकीकत है ये, इसमें कुछ हकीकत भी छुपी हुई है। चले इसी बात पर चलते हैं हम एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब इरफान मेमन की जानिब से तमाम उनकी कजन्स को, तमाम मेमन बरादरी को, मैं अपनी जानिब से हमारी प्यारी सी बहना सारा मेमन और अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब और सज्जाद अली की लवर जितने भी हैं, उसकी आवाज के लवर जितने भी हैं, सबको डेडिकेट करेंगे। अल्लो फड़ो।

0: वेलकम बैक। प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, पता हम आपको बताते हैं जनाब। KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर। काली जुबान के हवाले से बात हो रही है, अपना एक्सपीरियंस कोई नहीं बता रहा। बोले काली जुबान वाले होते हैं भाई, जो कहते हैं वो इस तरह हो जाता है। तो कोई ऐसा सिलसिला हुआ है, कोई ऐसे आस पास रिश्तेदारों में, दो सहबाब में कोई ऐसा बंदा जो जानने वाला हो, उससे मुलाकात हुई, उसे डर भी लगता हो यार भाई ये कुछ बोल ही ना दे भाई, साइड पकड़ लो यार, काली जुबान है भाई की। खातूने भी ऐसी होती हैं, खवातीन भी होती हैं, अल्लाह उनसे डर भी लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डरते हैं कि यार इनके साथ जरा तमीज के साथ ही गुफ्तगू करते रहे, इनको खुश रखें ताकि इनके मुंह से कुछ ऑल फॉल ना निकले, ऐसा भी होता है। खैर जी 3636 पर आपके मैसेजेस तो आ ही रहे हैं। मैं असल में देख रहा था ये किन्होंने कहा था, वहीद मुराद साहब का, हाँ हमारे खारादर वाले सलीम मेमन ने कहा था। तो वहीद मुराद का जब जिक्र करूं तो खारादर वाले हमारे भाई सलीम मेमन, समझ लीजिएगा कि आपकी पसंद का गाना चलेगा। और नदीम भाई वो मैसेज जिसके लिए था उन्होंने सुन लिया है। अच्छा अब आइंदा तो मैं कबूतर नहीं बनूंगा। अमीन मेट्रोविल से कह रहे हैं कि अच्छा भाई सही, हलीमा पठान एक अलग से नाम आया है, हलीमा पठान मेरी प्यारी सी बहन का को सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा मेहंदी हसन साहब का, एक बार चले आओ। यार अमीन भाई आपका गाना लिखना पड़ेगा, एक बार चले आओ अमीन भाई, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ अमीन भाई हैं जी, आगे पीछे हो जाते हैं। तो इन्होंने सबागुल को, मानूर को, हिना को, हलीमा पठान को डेडिकेट करने के लिए कहा है। अच्छा जी कह रहे हैं सांप की जुबान जो है वो काली होती है, ये हमारे साहब ज्यादा साहब ने कहा है, पक्की बात है साहब ज्यादा सोच लें। चले इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक ब्रेक की जाने।
1: FM 100's टाइम चेक, इट्स 12 midnight।
0: वेलकम बैक अगेन। और मैसेज और भाई आपको मेरा सलाम, सुबह सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम। एक गाने की फरमाइश की थी है हमारे मिर्जा नईम बेग लहरी ने, इश्क नचावे गली गली का सॉन्ग लगा दे। अच्छा भाई फिल्म का देखना पड़ेगा हमारे नईम भाई कि ये हमारे पास है भी या नहीं है, या मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा जनाब। और अगर ये मिल गया, वैसे तो 12:01 पर आपका मैसेज पड़ा है, तो 12 तक फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अनीस शहजादे आगे हैं और कह रहे हैं नदीम भाई सलाम, कैसे हैं आप, और तमाम सुनने वालों को भी अनीस का प्यार भरा सलाम, और नेक तमन्नाओं के साथ तमाम लिसनर्स के लिए सर हमारी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। जनाब लग गई है, लग गई है। लाला कह रहे हैं मुझे खुशी हुई कि आपके दर्द गम में कमी आई है, जिसको आपकी परवाह नहीं उसकी भी परवाह करना छोड़ दें। लाला अच्छा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पश्तो में लिखा हुआ है, इसके मुझे हिज्जे करने पड़ेंगे। अच्छा ये अयूब लाला के लिए मैसेज है, ये अयूब लाला का मैसेज नहीं है। तो आपने जो पश्तो में लिखा है वो हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा। सज्जाद भाई है भाई ये, नदीम भाई सज्जाद भाई को गुरु मंदिर से नुमाइश भेज दो। साहिबजादा साहब कह रहे हैं सज्जाद भाई कौन से वाले सज्जाद अली को। अच्छा साहिबजादा ये बताओ हर बात में गुरु मंदिर और नुमाइश क्यों आ जाता है, आपकी हर बात में जरूर आता है। और नदीम भाई मैं सबको पसंद आता हूं, बर्दाश्त नहीं करता कोई, आप इस पर चर्चा कर दें। गफार भाई इस पर बहुत बेहतरीन चर्चा हो सकती है। आप कहते हैं कि आप सबको पसंद आते हैं लेकिन बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता, तो इसमें आपके इसी जुमले में आपकी कुछ कमियां, आपकी जात में कुछ कमियां हैं वो सामने आती हैं। अगर ज्यादातर लोगों का यही हाल है कि वो आपको पसंद तो करते हैं मगर बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं, या आप अपनी बात छोड़ें क्योंकि आपने अपना जिक्र किया तो मैंने आपको इसमें शामिल कर लिया, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनमें जाहिर है कुछ ना कोई उनकी आदतें ऐसी होती होंगी जो पसंदीदगी की वजह से, कि आप किसी शख्स को पसंद करते हैं तो उसकी पसंदीदगी की वजह से कि मुझे ये पसंद है, तो उसकी जो भी एक कोई ऐसी आदत जो कि अच्छी नहीं है वो मैं पहली मर्तबा तो बर्दाश्त कर लेगा इंसान, दूसरी मर्तबे की कर लेगा, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बर्दाश्त का पैमाना जो है वो लबरेज हो जाता है। तो अगर आप ये समझें कि आप हक पर हैं और 100% आप सही हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लोग बर्दाश्त नहीं करते वो लोग सही नहीं है, यानी कि आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं ज्यादा लोग जो हैं वो आपका इंतखाब सही नहीं है, या तो फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों में ये सिलसिला, तो हर कोई तो बुरा नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब है कि उस इंसान में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कोई कमी है जिसकी वजह से लोगों में बर्दाश्त नहीं किया जाता वो। अब क्या है, एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों में एक अच्छाई ऐसी होती है जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, वो सिर्फ एक ही अच्छाई है और वो होता है मुंह फट होना, सच बोलना। जो इंसान मुंह फट होगा और सच बोलेगा वो लोगों से, लोगों उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, ये तो है। ये एक सिर्फ ऐसे लोग मुंह फट और सच बोलने वाले वो अकेले रह जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते लोग, दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें बुराइयां होती हैं, कि बुराई इन द सेंस क्या, जैसे अब मुंह फट होना है। देखिए, सच बोलना एक अलग चीज है, मुंह फट होना एक अलग चीज है। मुंह फट जो है वो थोड़ा सा बुराई में आ जाता है, लेकिन सच बोलना बुराई में नहीं आता। मुंह फट से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी इंसान में किसी चीज की कमी है, मैं हूं, मेरा रंग बहुत काला है, आप मुंह फट है, आप मेरे काले रंग का जो है वो उसका मिजाह करना शुरू कर देंगे, या किसी की कोई ऐसी बात जो कि सबके सामने नहीं करनी चाहिए, मुंह फट इंसान फौरन बोल देता है, ठीक है ना, तो ये बुराई में आ जाता है, ये आदत नहीं होनी चाहिए। आदमी मुंह फट हो मगर तरीके वाला हो कि जो बात बोलने वाली है बस वही, जो हक और सच वाली बात है बस वही बोल दे, लेकिन किसी की खामियों को किसी के सामने लाना और इस तरह की जो बातें करना, ये जो चीज है ना ये गलत है, और इस वजह से लोग जो है वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कोशिश करते हैं कत ताल्लुक ही करना शुरू कर देते हैं। और ये तो दो तीन चीजें हैं, और आगे और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं इंसान में, कुछ खामियां होती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है, हल भी बता देता हूं, कि आप अपनी जात का तज्जिया करना शुरू कर दें और सोचें, जैसा कि आपने मुझे मैसेज किया अभी, तो मैसेज किया तो जाहिर है आपको ये बात पता है, ठीक है ना गफार भाई, तो आप सोचें इस हवाले से कि यार क्या क्या क्या वजह है कि लोग ऐसा मुझे समझते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं करते, क्या मेरी ये वाली आदत है, ये वाली आदत है, या ये वाली आदत है, एनालाइज करें अपने आप को। तो उनमें से आपको जो चीज गलत लगे तो उस पर काबू करने की कोशिश कीजिए, तो यकीन मानिए लोग बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। चलें इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने फैसलाबाद से इसकी फरमाइश की थी। ये बेसिकली पंजाबी गाना है, मूवी का गाना है एलो फड़ो, और आवाज भी रूना लैला की है, संजू फिर याद आ गई।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। दो दिल एक दूजे को लो दूर हो गए। हाय हाय नरीन बहना, समझ सकता हूँ। अब गाना अच्छा लगा है तो मैसेज कीजिएगा। लाला कहते हैं कि शेख साहब फरमाते हैं कि कभी फर्ज थे हम भी किसी पर, कभी फर्ज थे हम भी किसी पर, फिर रफ्ता रफ्ता कजा हो गए। वाह वाह वाह वाह, हाय हाय क्या बात है यार शेख साहब की यार। लाला लाला खामोश खामोश क्यों, इतने संग दिल ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। हाय हाय हाय हाय हाय लाला, ए बाद ए सबा ढूंढ लिया हमने तुमसे मिलने का तरीका। ए बाद ए सबा ढूंढ लिया हमने तुमसे मिलने का तरीका, अब हम तुम्हारी गली में कुल्फियां बेचेंगे। लाला फुल अच्छे मूड में मगर थोड़े थोड़े से गायब हैं। और जनाब गफार भाई का मैसेज था लास्ट, जिस पर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। हाय हाय बी आर क्यू मिस अहमद, अब ये समझ में नहीं आया भाई, मिस अहमद हैं आप तो। मिस अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो सुनने का। और नदीम ब्रो बिच्छू की काली जुबान होती है। सलीम भाई बिच्छू की जुबान देखी आपने? बिच्छू का तो डंग होता है सुना है। अच्छा सही कह रहे हैं, वैसे बिच्छू की काली जुबान होती है, सही कह रहे हैं भाई आप, सही कह रहे हैं। इनामुल हक कह रहे हैं, इनामुल हक को सलाम और सुने हो इनाम भाई से पूछें कि मनोड़े के समंदर का मौसम कैसा है ताकि मैं आकर डुबकी मारूं। सलीम अहमद भाई मैं अभी से आपको मशवरा दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं मारिएगा डुबकी। ये जून जुलाई जो है इसमें समंदर भरपूर तरीके से अपने जोबन पर होता है और अगस्त तक चलता है ये सिलसिला। तो कोशिश करें कि अगर आप ससायले समंदर पर जाएं पिकनिक शिकनिक के चक्करों में, जितने भी सुनने वाले हैं तो उनसे गुजारिश यही है कि समंदर में डुबकियां सिर्फ किनारे पर ही लगाएं, ज्यादा गहराई में जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे तैराक हैं। और नदीम भाई आप कबूतर नहीं है, मेरे भाई हैं। हाय सो स्वीट, जीती रहो सभागुल। मैं बता देती हूं आपको, फिर वो भी मेरे भाई हैं, ऐसा ना कहने ना। अरे मेरा बच्चा, मैं मजाहतन बोलता हूँ कभी कभी, तो मेरी बात को दिल पर नहीं लिया करो। अमीन कह रहे नदीम भाई आप सुपरस्टार हैं। हाय फिर वही यार, बड़ी तारीफें लिखी हुई हैं अमीन भाई, थैंक यू वेरी मच यार। अब इतनी तारीफें आपने लिखी दी हैं तो क्यों ना आपके लिए गाना चला दें जो आपने गाना गाया। तो अमीन भाई ने जनाब एक ट्रैक की फरमाइश की थी और अमीन भाई का वो ट्रैक, अभी उन्होंने इतनी तारीफें कर दी हैं तो चला देना चाहिए फौरन से। पेश सर एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे, एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना। लाला कहाँ गायब है आप? वार्निंग है आपके लिए, फौरन आ जाए, क्योंकि अगला गाना जो है आपकी जानिब से डेडिकेट होने वाला है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जनाब, मैसेज देख लूं। सबा गुल, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि मेरी बहन मुझे मैं कबूतर समझती है मुझे, मैं मजाक कर रहा था, समझो बच्चा। अच्छा जी, अनीस कहते हैं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। नरीम भाई, यार आजकल के दौर में ना अनीस, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम रिश्तों को भी इस्तेमाल करने लगे हैं यार। लेकिन आपकी बात दुरुस्त। और वहीद मुराद की फिल्म परख का गाना, सलीम मेमन भाई खारा दर वाले, हम वहीद मुराद की फिल्म का गाना आपके लिए चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। परख का गाना मुझे मिल नहीं रहा, मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, है ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन आप स्पेसिफिक अगर गाना बता देंगे तो वो चला देंगे। अब वो पूरी मूवी का फोल्डर ढूंढ रहा हूँ मैं, उसका कोई गाना चला दूं, लेकिन इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों दांत फिरते हो सर्दियों की शामों में। रानी मेरी बहना क्या कहती है, हाँ कहती है बहन मेरी के मैं भी मद्दा हूँ सज्जाद अली साहब की। तो रानी, अब हम जब सज्जाद अली का गाना जब भी चलाएंगे तो मेरी बहन आपको डेडिकेट जरूर करेंगे। और मेरी प्यारी बहना संजीदा को भी कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा मेरी तरफ से, वो तो हम कर देंगे, मगर आपकी प्यारी सी बहना संजीदा है कहाँ? आप अक्सर हमें खबर दे देती हैं, अभी भी दे दीजिए। एक बार मेरा दोस्त गा रहा था प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो, मैंने कहा नहीं हम नहीं बता रहे, तुम पूछे जाओ। ये हमारे नौमान भाई बल्दिया से मैसेज था, मेरा ख्याल है काफी देर पहले इन्होंने मैसेज किया होगा, जब प्यार कहाँ बिकता है सलीम मेमन का मैसेज हमने पढ़ा होगा तो उस वक्त इन्होंने उसका जवाब दिया होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी हो जाएं, डेडिकेशनें भी पूरी हो जाए। तो हमारे अयूब लाला ने कहा था कि भाई सवा गुल को, हिना गुल को, महानूर को और चौथा कौन था, मुश्क को उन्होंने गाना डेडिकेट करने के लिए कहा था, तो आपकी जानिब से गाना हेलो फड़ो।

वेलकम बैक टू शम्मे मोहब्बत है, असद अमानत अली साहब की आवाज, और उम्मीद करते हैं कि आपको आई होगी पसंद जनाब। और मेरे सामने जो है पंजाबी गाने भी बहुत सारे हैं पाकिस्तानी मूवीज के, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज के हवाले से भी बहुत सारी बातें करूंगा और वो भी चलाऊंगा, लेकिन कुछ सुर ताल बैठ नहीं रहा। यानी कि उर्दू ट्रैक्स जो हैं उनका जो मूड है, म्यूजिक है, टेम्पो है, वो डिफरेंट है और पंजाबी गानों का डिफरेंट है। तो फिर यानी कि समझ रहे हैं ना, इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और किसी दिन जो है उसी टेम्पो के जो ट्रैक्स हैं वो साथ साथ लगाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी एक दो गाने पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि वो आप लोगों की समातों की नजर करूं, लेकिन अभी नहीं। मिस अहमद कह रही है सलाम वालेकुम असलाम, जीती रहें मुस्कुराती रहें। और कहां गया भाई, अच्छा अच्छा जी वाले मैसेज है। लाला कह रहे हैं कि हाजिर हूं, फुल खुमार में हूं, आपके शो सुन रहा हूं। बस ये लाला समझ गया, मतलब थकावट भी होती है इंसान को। और नौरीन कह रही हैं कि फैमिली के साथ मसरूफ है मेरी प्यारी बहना संजीदा। ओके, और थैंक्स लाला, थैंक्स नदीम भाई, एंड आई मिस यू। मुश्क सबागुल कह रही हैं, और नदीम भाई मैं खामोशी से सुनता हूं। उमर गुज्जर खाने वाल तो है, खाने वाल तो तुसी सुन दे हो और खामोशी नाल सुन दे हो। उमर साहब ते गुजर ने पाए ना, हाय हाय हाय क्या बात है। उमर भाई हम आपको अब पंजाबी गाना जरूर डेडिकेट करेंगे। मैं अभी जी पंजाबी गानों की बात ही कर रहा था और इत्तेफाक ऐसा है कि यानी कि समझ रहे हैं ना, आपने पंजाबी गाने की पंजाब से ही हमें मैसेज कर दिया है तो आपको याद भी रखेंगे। खामोशी से सुनते हैं, इतनी दूर से सुनते हैं हमें, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक भी है डेडिकेशन है, और ये हम सलीम मेमन भाई जो खारा दर वाले हैं उनको डेडिकेट करेंगे। हम परख फिल्म का तो नहीं कर रहे मगर वहीद मुराद साहब की एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन मूवी का ट्रैक है वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। एलो फड़ो

वेलकम बैक। हाँ, इसी मूड पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था। ब्यूटीफुल ट्रैक और ये अपने दौर की बहुत ही जबरदस्त मूवी वहीद मुराद साहब की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। वाह जिगर, मैं हूँ तेरा परवाना। वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब गाना अयूब अफरीदी भाई को भी पसंद आए। मेरा ख्याल है आंखें खुल गई होंगी इनकी। अच्छा जी, एक सॉन्ग वादा करो साजना, हमारी वाइफ ने फरमाइश की है। आए भाई सलीम मेमन भाई, तो ये आपके शौहर ने आपको फरमाइश कर दी है, तो जरूर पूरी होगी। हमारी भाभी को सलाम कहिएगा। आप करते ना खुद फरमाइश, तो ये कभी भी नहीं पूरी करता। अच्छा वादा करो साजना, छूटेंगे हम तुम कभी हर जीवन की इस राह में। बिल्कुल चलेगा। और देखें आपको भाभी कैसा गाना डेडिकेट करी है। हमारे प्यारे से यूसुफ भाई पापोश से आ गए हैं और तमाम सुनने वालों को सलाम का है और एफएम 100 की फैमिली को भी सलाम का है। नदीम भाई, मेरे मुंह बोला बेटा की जिसका नाम हारिस अंसारी है, उनका इस संडे बात पक्की का रसम है, तो उनको ढेर सारी दुआएं दें और एक अच्छा सा सॉन्ग उनके लिए प्ले कर दें। ये बच्चा मेरे साथ मेरी कंपनी में होता है और नदीम भाई आज शो बहुत शोर बहुत आ रहा है आवाज में। जी इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये शोर खत्म हो जाएगा। इस पर हमारी जो है टेक्निकल टीम जो है काम कर रही है, डोंट वरी। और भाई बहुत बहुत मुबारक हारिस अंसारी को। बस मैं दुआ क्या दे सकता हूँ, अल्लाह ताला हारिस अंसारी के नसीब बहुत अच्छे करे, उस बच्ची के भी अच्छे करे जो इनकी जिंदगी के साथ मुंसलिक हो रही हैं। और हारिस के साथ साथ दुआएं डबल होने वाली हैं और दुआएं डबल इस वजह से होने वाली हैं कि मेरे बहुत ही प्यारा मेरा शहजादा मेरा भतीजा जो है आज उसकी भी बात पक्की हुई है और रस्म हुई है उसकी, और वो भी एक रिश्ते से जो है जुड़ गया है। उसका नाम है मौजम अली जावेद। मौजम की और हारिस अंसारी इन दोनों की जो है आज बात पक्की हुई है, तो अल्लाह ताला, अच्छा उनकी संडे को हुई है और मौजम की आज बात पक्की हुई है, तो अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे। और अल्लाह ताला इनको हजारों खुशियां अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि जिंदगी में इतनी तरक्की मिले और इनके सितारे मिले। जब भी बच्चों की या किसी की बात पक्की हो रही हो, मंगनी हो रही हो, शादी का कोई सिलसिला हो, तो दोनों के नसीब के लिए, अच्छे नसीबों के लिए दुआ जरूर करें। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा खुश रहें। और हारिस अंसारी ये तमाम दुआएं हम सब की जानिब से और खुसूसी तौर पर हमारे यूसुफ भाई पापोश वाले जो हैं उनकी जानिब से आपके लिए और मौजम अली जावेद के लिए ये दुआएं मेरी जानिब से तो दिल से हैं ही हैं। और आप भी मौजम के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और ये दोनों जो लड़के और लड़की के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। हारिस की भी और उसकी भी होने वाली जो दुल्हन है उनकी भी जोड़ी सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। और इसी बात पर जनाब अब जो है ना बस बहुत हो गया, एक गाना जो है ना हो जाए अब पंजाबी का। और मैं थोड़ा सा गाना ऐसा चलाना चाह रहा हूं कि खुशी वाला हो। तो जनाब ये ट्रैक जो है हम पंजाबी फिल्म का ट्रैक है और ये डेडिकेट करेंगे स्पेशली हारिस अंसारी को और मौजम अली जावेद को उनकी बात पक्की होने पर। और उसके साथ साथ हमारे उमर गुज्जर साहब जो खानेवाल से सुन रहे हैं उनको भी हम डेडिकेट करेंगे ये वाला गाना। तो उमर गुज्जर साहब थोड़े वास्ते भी है गाना एलो फड़ो।

0: हाय सुनिया दिल दा मामला। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। तो हमारे उमर गुजर साहब तन पसंद आया है तो जरूर बताइएगा। और जनाब हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ कह रही है कि मेरी रिक्वेस्ट कब प्ले होगी। वाह जी वाह, कब की प्ले कर चुका हूं वो तो। ये वाला जो गाना था ना आपका, वो एक दूजे वैसे
1: दो दिले एक दूजे को दूर हो गए।
0: और इसके लिए तो मैंने बहुत सारी बातें भी की थी आपके हवाले से। तो मेरी बहन नौरीन, ये तो गलत बात हुई, हमने गाना भी चलाया और आपने सुना भी नहीं, यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं और हमारे चार्ली आ गए हैं। चार्ली की हकीकी जिंदगी घूमने गमगीन थी, हंसते चेहरों के पीछे उदासी का दरिया था, सबको मेरी तरह खुश रखना चाहता था। थैंक यू, सॉन्ग प्ले किया, सलाम सबगल अमीन भाई। मैं वही इंसान होता है, कामयाब इंसान, अच्छा इंसान, जो अपने गमों को अपने दिल में छुपा कर मुस्कुराहटें बखेरता रहता है। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही रखे। इनाम भाई कह रहे हैं कि भाई जान अच्छा पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई, अंगूर खाएंगे मेरे ख्याल है लिखा हुआ है और साथ में बोतल भी। ये एक पैकेज हो गया, ये समझ में नहीं आया इनाम भाई क्या ये फरमाइश हो रही है मेरे लिए। लाला कह रहे हैं कि अब एक गाना सिर्फ आपने डेडिकेट करना है, अगर आपको वक्त मिले नदीम भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर बीच में कोई मौका मिले तो एक गाना डेडिकेट कर दीजिएगा सिर्फ सवागुल को। बिल्कुल कर देंगे जनाब, जो गाना चलेगा तो नालो नाल हैं जी, जो हैं जी नाम ले लेंगे। नदीम भाई शो में आपकी आवाज नहीं आ रही, सवागुल कह रही है। अरे मेरी बहना ये मैं बता चुका हूँ, जो शोर है ये अनकरीब चला जाएगा। अच्छा सुनियो, अब सवाल के जवाब की जानिब भी आते हैं, क्योंकि बीच में आप लोगों की, अब होता ये कि 12 बजे के बाद आपकी जो फरमाइशें हैं, आपकी जो डेडिकेशन है, उनकी रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो जाता है। समझ से बाहर है वैसे, लेकिन खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो सवाल मैंने आपसे किया था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी जुबान वाकई में काली होती है। तो किसी ने सांप कहा तो किसी ने बिच्छू कहा, दोनों जहरीली बातें की उन्होंने, लेकिन ना सांप है ना बिच्छू है। बहुत से लोगों ने, मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, जिनमें हमारी प्यारी सी बहन नौरीन भी है, उन्होंने भी बिल्कुल इसका जवाब जो है वो दुरुस्त दिया था। तो जर्राफ जो है उसकी जुबान गहरे स्याह काले रंग की होती है। जराफ भी कहते हैं, जर्राफ भी कहते हैं, जराफा भी कहते हैं, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो ये आप लोग जहन में रखिएगा कि जराफ की जो जुबान है वो काली होती है। अब आ जाएं जनाब के इंसानों के हवाले से, तो उस हवाले से इसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखिए नजर बद का जहां तक ताल्लुक है वो तो है। आला जी मैं सो गई थी नदीम भाई, बहुत ही आला, अब आप उठिए तो दोबारा नहीं चल सकता, आपके लिए चलाया था हमने ट्रैक, नौरीन तौसीफ का मैसेज था। तो अब चर्चा थोड़ी सी एक दो मिनट की लूंगा मैं आपके, और ये जराफ के काली जुबान के हवाले से एक मुहावरा भी ये हमारे इंसानों में ये मशहूर है बहुत, के काली जुबान वाला इंसान वो औरत भी होती है मर्द भी होता है, और उससे डरा भी जाता है कि भाई ये काली जुबान। ऐसा पता क्या है, ये मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ खराफात है, हमारे जहनी फतूर है, और साइंसी एतबार से और दीनी एतबार से इसकी कोई खास हकीकत है नहीं कि भाई जिसने जो बोल दिया, ये इत्तफाक जरूर हो सकता है या उसकी किस्मत उस बंदे की या बंदी की ऐसी हो सकती है कि वो किसी मौके पर कोई बात कह देता है तो वो जो है वो पूरी हो जाती है। और हम, और खुसूसी तौर पर वो बात जो बद की बात है, बद से मुराद ये कि बद दुआ हो गई या गलत बात हो गई, اس طرح کی بات اگر کوئی وہ کرتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس سے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار بھائی یہ بڑی کالی زبان والا ہے. اور المیہ دیکھیں کہ کسی دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی انسان اتنا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کی چاپلوسی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی چرچا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں بات کو. یہ تو بات حقیقت ہو گئی کہ ایسا کوئی ہے نہیں, لیکن اتفاق ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہو جائے. تو اب اس سے منسلک ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دیتا ہوں کہ دینی طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ سنا ہوا ہے میں نے, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا, یہ میری سنی سنائی بات آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں, لیکن اس کی انشاءاللہ تعالی میں تحقیق اور تصدیق بھی آپ کو کر کے بتاؤں گا. لیکن جہاں تک میرا اپنا اندازہ یہ درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دن میں کوئی ایک ایسا ٹائم ضرور آتا ہے کہ وہ جو بات سوچتا ہے یا جو بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے, چاہے وہ دعا ہو. بد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اچھائی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اچھائی میں کچھ سوچتے ہیں یا نیت کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری کرتا ہے. اچھا جہاں تک نظر کا تعلق ہے, سبا گل میری پیاری سی بہن نے یہ بھی پوچھا تھا کہ نظر بد, نظر بد تو یہ ہے, نظر بد کے حوالے سے جو ہے سلسلہ ہے. نظر لگتی ہے, بالکل لگتی ہے, پیار کی نظر بھی لگتی ہے اور حسد کی نظر بھی لگتی ہے, بے شک لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نظر بد سے بچا کے رکھے. تو یہ سوال جو تھا اس کا جواب بھی بتا دیا میں نے, اور اب جو ہے میں یہ چاہ رہا تھا, سوال کے جواب بھی ہو گئے, آلموسٹ آپ کے میسجز بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں پورے کے پورے, ہیں جی تے ہیں جی. تو اب چلتے ہیں آپ کو گانے کی جانب لے کے جاتے ہیں, اور اسپیشلی جو گانا میں بھی چلا رہا ہوں وہ ہے بھائی ہمارے پیارے سے شہزادے سلیم میمن جو کہ فالودے والے ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہماری پیاری سی وائف نے فرمائش کی ہے, ندیم بھائی ضرور پوری کیجیے گا. تو بھائی مسز سلیم میمن کی فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں اور یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں مسز سلیم میمن کی جانب سے سلیم میمن کو, ایلو پھڑو.

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको। वालेकुम अस्सलाम अमीन भाई, सवा कुल कह रही है और जबरदस्त मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मत कहा करें भाई, आपका अपना शो है तो सुने। सारी कहानी तो मैं खत्म कर ही चुका हूँ, तो लिहाजा फौरन से पेशतर जो है एक और ट्रैक की जानिब चलते हैं, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारे यूसुफ साहब, जो नए वाले यूसुफ साहब हैं उनको भी, अक्सा को भी, अलीजा को भी, जितने भी मेरे नए लिसनर्स हैं उनको तो डेडिकेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये हम सभा को भी डेडिकेट कर देंगे। और उनके लिए कहते हैं कि बेख्याली में टूटा है मुझसे तुम्हारे दोस्त का दिल, एक निशाना गलत लग ही जाता है, हर तीर अंदाज से एलो फड़ो

वेलकम बैक सुनियो, और इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाजत भी चाहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबकी समाधों की नजर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी जनाब कल स्लीपलेस नाइट में। अल्लाह हाफिज़।

एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। वक्त 2:47 हो चुके और FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। प्रोग्राम आप इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं यूट्यूब पर ख्वाब दरीचे, कुछ शायरी, कुछ गजलें, कुछ आपके मैसेजेस, आपके पैगाम, आपके कमेंट्स। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते, रिश्ते नहीं छोड़ा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। जिसकी आवाज में सलवट हो निगाहों में शिकन, जिसकी आवाज में सलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो। ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें, जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें। इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते, इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते। शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा। जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते, जिन जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। जाके कोहसार से सर मारो के आवाज तो हो, जाके कोहसार से सर मारो के आवाज तो हो। खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते, खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। जिसकी आवाज में सलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो। ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते, जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें, जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें। इस तरह ख्वाब से आंखें नहीं फोड़ा करते, इस तरह ख्वाब से आंखें नहीं फोड़ा करते। जाके कोसार से सर मारो कि आवाज तो हो, जाके कोसार से सर मारो कि आवाज तो हो। खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते, ये कलाम था गुलजार का। क्या खूबसूरत कलाम था, क्या लफ्जों को जोड़ के क्या अदायगी की है, क्या इजहार किया है, वाह वाह। मगर मोहसिन नकवी भी कुछ कम नहीं कहते हैं कि रूठा तो शहर को, रूठा तो शहर ख्वाब को गारत भी कर गया, रूठा तो शहर ख्वाब को गारत भी कर गया, फिर मुस्कुरा के ताजा शरारत भी कर गया, फिर मुस्कुरा के ताजा शरारत भी कर गया। शायद उसे अजीज थी आंखें मेरी बहुत, शायद उसे अजीज थी आंखें मेरी बहुत, वो मेरे नाम अपनी बसारत भी कर गया। शायद उसे अजीज थी आंखें मेरी बहुत, वो मेरे नाम अपनी बसारत भी कर गया। मुंहजोर आंधियों की हथेली पे एक चिराग, मुंहजोर आंधियों की हथेली पे एक चिराग,